हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 मई 2026।

इस समय सवेरे के 5:57 होने को हैं। आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को

0: और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन वार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा, शुरुआत हमेशा मन से होती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। कुछ ही पलों में 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन कला।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी मानी गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। करता पल पल तेरा वंदन, युग युग का प्यासा मेरा मन, कर ले तू स्वीकार मुरारी, तू ये मेरा प्रणाम। श्री अनूप जलोटा जी को हमारा प्रणाम। स्वागत है सर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं, और अनूप जी हमें आप बताएंगे कि भक्ति के कौन से रंग से हमारे श्रोताओं को रंग रहे हैं इस कड़ी में।
2: ये भजन तो ऐसा क्षेत्र है कि कुछ भी गाया जाए तो पहले तो अपनी खुद की चुनरिया रंग जाती है, और जब खुद रंग गए तो सामने वाला तो रंग ही जाएगा। इसलिए इसका आनंद जो है वो पहले स्वांतः सुखाय वाला होना चाहिए
1: जी,
2: कि भजन गाकर उस भक्ति में उस रस में अपने को पूरा तरह डुबो लिया जाए, और वही आनंद में आज तक लेता रहा हूँ
1: जी। अनूप जी, ये जो सुख की बात की, भक्ति रचनाओं से जो सुख प्राप्त होता है, लेकिन एक सुख और है, वो है बचपन का सुख। बचपन के संसार में जब पहुँचते हैं तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। आपको हम आपके बचपन की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ आपका बचपन है, करियर है। हमें बताइए अपने करियर के बारे में और बचपन की उन गलियों के बारे में जब आपने गाना शुरू किया।
2: लखनऊ में गुजरा है बचपन, और 7 साल की आयु थी जब मैं पिताजी से, जब मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था और स्टेज पे गाना भी शुरू कर दिया था। सो 7 साल की आयु से मैं मंच पर गा रहा हूँ, और जैसा कि पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उन्होंने सख्ती से सिखाया है
1: जी।
2: लेकिन स्टेज पे जब मैं उनके साथ गाता था तो बड़ी नरमी रखते थे, प्यार से गवाते थे, तो हिम्मत बढ़ती थी। स्टेज पे डांटना वो सब नहीं होता था, स्टेज पे बड़े प्यार से। तो जो ऑडियंस फियर होता है, कहते हैं कि स्टेज पे कुछ लोग डरते हैं, वो चीज बचपन से ही निकल गई थी। तो अब ऑडियंस जितनी भी बैठी हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में एक विश्वास जगाना जरूरी होता है कि जब हम स्टेज पे बैठे हैं तो उसको ठीक से गाएं। आकाशवाणी से, विविध भारती से, ऑल इंडिया रेडियो से हमारा संबंध बहुत पुराना है
1: जी।
2: मुझे याद है जब मैं 17 या 18 साल का हूंगा, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया भजन गीत गजल के लिए, और मेरी माँ, वो भी थोड़ा गाने में शौक रखती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाऊंगी। मैंने कहा चलिए आप भी ऑडिशन दीजिए। हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम दोनों ऑडिशन देने गए। उन दिनों मेरा अच्छा खासा नाम लखनऊ के आसपास हो चुका था एज ए सिंगर, खूब बिजी आर्टिस्ट था मैं। तो मैं और मेरी माँ जब हम लोग ऑडिशन देने गए, तो उस ऑडिशन में मेरी माँ पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था।
1: क्या बात है।
2: तो उसके बाद मुझे कहने लगी, देखा बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखो क्या हुआ। खैर, उसके बाद कुछ 6 महीने बाद दोबारा चांस दिया जाता है ऑडिशन का, फिर मैंने इलाहाबाद से ऑडिशन दिया और वहां से मैं पास हो गया
1: जी।
2: उसके बाद हम बम्बई आ गए, जब मैं 20 साल की आयु थी बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे आकर मैं गजल भजन रिकॉर्ड करने ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा, तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि अब पहली बार रिकॉर्ड करने आए हो, यहाँ एक कोरल ग्रुप है जो कानू घोष जी चलाते हैं, तो उसमें देख लो अगर तुम्हें चांस मिल जाए। तो मैंने कानू घोष जी को गाना सुनाया
1: जी।
2: उन्होंने मेरी भर्ती कर ली और मैं ऑल इंडिया रेडियो कोरल ग्रुप का मेंबर बन गया। मैंने करीब 2.5-3

0: साल उसमें गाया, मेरी तनख्वाह थी 320 रुपए महीना
1: जी,
0: और
1: जी।
0: हम उसमें गाते थे, रोज आते थे, रियाज करते थे, गाते थे, और महेंद्र कपूर साहब या उषा मंगेशकर जी ऐसे कलाकार आते थे, उनके पीछे हम कोरस गाते थे
1: जी।
0: तो वो मेरी ट्रेनिंग का टाइम था, बहुत मजा उसका लिया है मैंने। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि मेरा जो संबंध है ऑल इंडिया रेडियो से वो पिछले 45 साल से चल रहा है, और ये संबंध ऐसा हो गया है कि मैं जब भी किसी ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सेकंड होम में आया हूँ, इतना पुराना संबंध मेरा है।
1: और अब आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में भी शामिल है।
0: हाँ, वो तो मुझे कुछ ड्यूटी दी है सरकार ने, तो मैं प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर हूँ, काम कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: आपने अभी जिक्र किया था कि माँ के साथ आकाशवाणी पर गए थे, आकाशवाणी केंद्र पर, और माँ ऑडिशन पास हुई थी, तो पिताजी से आपने गाने की तालीम ली, माँ से कौन सी तालीम ली जो आपके जीवन में काम आए?
0: शादी के पहले वो बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी, और वो इतना अच्छा नृत्य करती थी कि आज भी बिरजू महाराज जी और सितारा देवी जी जब भी मिलते रहते थे तो हमारी मम्मी का जिक्र करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा कथक करती थी, उन्होंने छोड़ दिया। तो शादी के बाद हमारी मदर ने छोड़ दिया था कथक, लेकिन क्योंकि जो भी डांसर्स हैं उनके अंदर इतनी लय होती है, सुर होता है, जैसे बिरजू महाराज जी कितना अच्छा गाते हैं, तो लय और सुर जो दोनों मिला के है मुझ में जो आया है वो पिताजी से स्वर आया है और माँ से लय आई है।
1: क्या बात,
0: तो वो दोनों चीज मिला के मैं काम कर रहा हूँ।
1: अब हम चाहते हैं कि उन दिनों को याद करते हुए आप कौन सा भजन श्रोताओं को सुनवाएंगे और उसकी चर्चा कीजिए।
0: जग में

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुने तो एक नया आनंद आएगा।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और ये जो रागों का खेल आप करते हैं वो बहुत ही अप्रतिम होता है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। वक्त हो रहा है इजाजत लेने का, तो हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले बता दें, ऐसी लागी लगन भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परदेसी फिल्म के इस गाने के साथ। मन्ना डे की आवाज में, अली सरदार जफारी की आवाज में, माफ कीजिएगा, अली सरदार जफारी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।
1: अरे जरा सुनो लगा कर ध्यान, यहाँ जन्मे लोक महान बड़े।

आप सुन रहे थे अली सरदार जाफरी का लिखा ये गाना परदेसी फिल्म से। अगला गाना सुनते हैं महात्मा कबीर फिल्म से, सी एच आत्मा की आवाज में सी पांडे के बोल और अनिल बिस्वास का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मोहम्मद रफी और गीता दत्त।

आखिर कौन है मधुबाला का चिच्चोर? आइए सुनते हैं तराना फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी की आवाज में, प्रेम धवन के बोल, संगीत अनिल बिस्वा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना सुन

देखते हैं वारिस फिल्म से। सुरैया की आवाज में ये एक मीठी सी लोरी को लिखा है कमर जलालाबादी ने और अनिल बिस्वास ने इसका संगीत दिया है।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना हमारी याद आएगी फिल्म से, केदार शर्मा के बोल। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। आइए शुरुआत करते हैं जंजीर फिल्म के इस गाने के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गुलशान बावरा के बोल और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अगला गाना सुनवाने से पहले हम आपको बता दें, इस फिल्म की एक बहुत ही खास बात है और शायद वही खास बात अगले गाने की फिल्म में भी हो और शायद वही खास बात उसके अगले गाने की फिल्म की भी हो। आखिर है क्या ये खास बात, बताएंगे आपको इस गाने के बाद। सुनिए लावारिस फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: इन फिल्मों की खास बात है निर्देशक प्रकाश मेहरा और अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुपरहिट जोड़ी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: सुनिएगा इस सुपरहिट जोड़ी की फिल्मों के और गाने, लेकिन इस अंतराल के बाद।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन बावरा की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आप सुन रहे हैं शराबी फिल्म से ये गाना। इसके पहले आप सुन रहे थे हाथ की सफाई फिल्म से गाना, जो रणधीर कपूर पर फिल्माया गया था।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं।
1: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का

0: ने लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं

0: ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम

0: कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत। मिका सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य नक्श और प्रीतम की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।
1: मेरे ही गालों पे चाटे क्रिकेट के जैसी, तबले पे क्रिकेट के जैसी, लिपस्टिक का टप्पा लगा दी है गालों।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का यह आखिरी गीत आप सुन रहे हैं एलिशा चिनोई, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज में। गुलजार के बोल, शंकर महादेवन का संगीत और फिल्म का नाम बंटी और बबली।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

ऑफिस ना स्कूल और ना ही सुबह की भागम भाग, बस थोड़ा सा आराम, परिवार का साथ, डाइनिंग टेबल पर लगी नाश्ते की खुशबू में महकता अपनों का प्यार, और इन सब को और भी इंटरेस्टिंग बनाता आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार। यही सब बातें मिलकर ही तो संडे की सुबह को बहुत सुहानी बना देती हैं।

सुकून की सुबह, पक्षियों की चहचहाट, प्रकृति की हरियाली, चाय की खुशबू और संडे का दिन, हर इंसान के पूरे हफ्ते की चाहत है ना। संडे की सुबह का इंतजार हम पूरे 6 दिनों तक करते हैं, क्योंकि वो संडे की ही सुबह होती है जब ना घड़ी का अलार्म ना

0: तो दोस्तों हाजिर हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ नित नई जानकारियों और सुरीले नगमों से सजा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेकर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए करवाते हैं हम आपका हमारी टेक्निकल टीम से परिचय।
1: जी हाँ श्रोताओं, किसी भी कार्यक्रम को एक सशक्त टीम ही सशक्त बना पाती है, खूबसूरत बना पाती है। तो इसीलिए अभी जो सशक्त टीम है उसका परिचय भी आपसे करवाते हैं।

0: श्रोताओं ट्रांसमीटर पर हैं पारसपुरी गोस्वामी कैलाश चंद्र सोलंकी। और कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार। आज के अनाउंसर्स ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल पर हैं शुभम और एफएम पर हैं सत्येंद्र। इस खूबसूरत नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास के द्वारा। और कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड़ ने। और इस कार्यक्रम में सूत्रधार के रूप में जिस आवाजों को आप सुन पाएंगे आज, मैं हूँ नेहा रांकावत और
1: मैं हूँ लीना माथुर। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और सुनते हैं इसी के साथ इसका पहला गीत।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन बिना चीरा।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना।

दोस्तों, ये संडे का जो दिन होता है ना, वो सिर्फ सवेरे नाश्ते की टेबल तक ही छुट्टी का दिन रहता है। उसके बाद टेबल पर बैठे बैठे ही न जाने कितने पेंडिंग काम निकल जाते हैं करने के लिए कि वो छुट्टी बस नाम की ही छुट्टी रह जाती है। और डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही मन बार बार यही कहता है कि अरे भाई, इससे तो ऑफिस ही चले जाते, कहता है ना। पर फिर भी संडे का इंतज़ार हम मंडे से ही करना शुरू कर देते हैं, और क्यों ना करें। जो सुकून, जो आराम हमें संडे को मिलता है, वो वीकडेज में कहाँ मिल पाता है। तो चलिए, चाय की प्याली हाथ में लीजिए, आंखें बंद करिए, सुकून के दो पल बिताइए और महसूस कीजिए इस गाने को।

श्रोताओं, कभी खुशी कभी गम तो आते ही रहते हैं और आप पर, आपकी नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। क्या आप गमगीन हो जाते हैं या फिर उस गम में भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आज संडे है और फुर्सत का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो चलिए आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। गांव के बाहर एक पुराना गहरा कुआं था। राजा ने देखा कि उस कुएं के पास एक बूढ़ा किसान बैठा था जो बेहद गरीब दिख रहा था और थका हुआ सा लग रहा था। उसके हाथ में था एक पुराना मिट्टी से सना हुआ तांबे का सिक्का। किसान उस सिक्के को बार बार कुएं में फेंकने की कोशिश करता, फिर रुक जाता और रोने लगता। राजा को बड़ी हैरानी हुई। किसान के पास गया और पूछा, बाबा तुम इस तांबे के सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे लो।

किसान ने रोते हुए कहा, महाराज यह कोई आम सिक्का नहीं है, ये मेरे दादाजी ने मुझे दे दिया था और कहा था कि जब तुम पर सबसे बड़ा संकट आए ना, तब उसे इस कुएं में फेंक देना, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज जब मेरी फसल खराब हो गई है, घर में अनाज नहीं है और मेरी बेटी भी बीमार है, इससे बड़ा संकट और क्या होगा। लेकिन जब मैं इसे फेंकने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये आखिरी उम्मीद भी खो दी तो मेरे पास क्या बचेगा। राजा ने थोड़ा सा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि देखो किसान, तुम्हारा जो एक संकट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। चलो एक काम करते हैं, तुम ये सिक्का मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। किसान खुश हो गया, उसने तांबे का सिक्का राजा को दे दिया और सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला गया। उन पैसों से उसने बेटी का इलाज करवाया, नए बीज खरीदे और उसकी जिंदगी बदल गई। फिर क्या हुआ? मंत्री को जरा सा ये अजीब लगा। उसने राजा से पूछा, महाराज आपने उस बेकार के तांबे के सिक्के के बदले 100 सोने के सिक्के क्यों दे दिए? उस कुएं में तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं था। तो राजा ने हंसकर जवाब दिया और जवाब बहुत ही विचित्र था, चमत्कार कुएं में नहीं है। राजा ने बोला, चमत्कार कुएं में नहीं है, उस किसान के विश्वास और उम्मीद में है। वो सिक्का उसकी आखिरी उम्मीद था, अगर वो उसे कुएं में फेंक देता तो शायद उसे कुछ ना मिलता और वो निराशा में डूब जाता। मैंने उसे उम्मीद के बदले एक नया रास्ता दे दिया है। जब तक इंसान के पास उम्मीद होती है ना श्रोताओं, तो वो लड़ सकता है। तो राजा ने सिर्फ उसकी उम्मीद को एक सहारा दिया था। और जिंदगी में जब सबसे मुश्किल वक्त आता है ना, तो सबसे पहले हमारी उम्मीद होप डगमगाने लगती है। लेकिन याद रखिए, जब तक आपके पास लड़ने की और आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है ना, थोड़ी सी भी उम्मीद, तो चमत्कार कभी भी और किसी की भी रूप में हो सकता है। तो श्रोताओं, मुश्किल वक्त में अपनी उम्मीद को कभी मत खोना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

दोस्तों छुट्टी का दिन तो सुकून वाला होता ही है, क्योंकि इस दिन सुबह ना तो घड़ी में बजने वाला अलार्म हमें दुश्मन लगता है और ना ही छुट्टी के दिन हमें जल्दी उठने की कोई कवायद होती है। छुट्टी का दिन घड़ी के हिसाब से नहीं, मन के हिसाब से बीतता है। पर फिर भी छुट्टी बिताने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग होता है। कोई छुट्टी के दिन देर तक सोना चाहता है, तो कोई परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, तो कोई अपने यारों दोस्तों के साथ पुरानी यादों के गलियारों में चक्कर लगाना चाहता है। सबके अपने अपने प्लान होते हैं, लेकिन संडे के दिन माँ का प्लान क्या होता है? और अभी संडे की ही बात क्यों करें, अभी तो बच्चों के लिए एवरीडे संडे वाला दौर है। छुट्टियाँ हो गई है, तो ऐसे में माँओं की हालत का क्या कहना चाहिए? छुट्टियों का दौर और मौसम में ज़बरदस्त गर्मी, ऐसे में बच्चे, मेहमान, खान पान की फरमाइशें, तो महिलाओं के लिए तो ज़रा मुश्किल हो ही जाती है। हाँ, ये और बात है कि महिलाएं इस गर्मी में भी खाना बनाने में होने वाली दिक्कत को जाहिर नहीं करती। लेकिन अगर आज आपकी छुट्टी है तो थोड़ा किचन का चक्कर लगाइए ना, पत्नी का, माँ का हाथ बटा दीजिए, फिर उनके चेहरे की खुशी देखिए। अगर आपकी इस छुट्टी का आनंद दुगना ना हो जाए तो कहिएगा। इसीलिए बस अपने हाथ में जो रेडियो है या अपने फ़ोन में जो रेडियो में नमस्कार बज रहा है उसको लेकर किचन में जाइए, माँ को भी सुनाइए और उनकी मदद कीजिए।

श्रोताओं, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से न्यूज ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। प्रादेशिक समाचार के बाद नमस्कार कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। समय हुआ है हिंदी में प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब

0: चैटिन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हेग में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन ever before।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हो गया है। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 183 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। बगरू के ठिकरिया गांव में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने VC के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। समारोह में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास का रोड मैप बनाकर पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए MOU किए गए हैं। वहीं कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह में जाने के लिए प्रेरक पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठिकरिया गांव तक EV बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित EV बस का उपयोग कर आम जन को ग्रीन मोबिलिटी का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। CBI के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले CBI ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को कल पुणे की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में इससे पहले कई नवाचार किए गए हैं जिससे सदन की अनूठी पहचान बनी है। एक रिपोर्ट।
2: नई राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण के बाद भवन को गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ ही यहां कई नवाचार किए गए हैं। इनमें डिजिटल और कागज रहित व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, जन दर्शन कार्यक्रम, शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और औषधीय वाटिका शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी,

0: केंद्रीय कक्ष की परिकल्पना और संविधान क्लब को विचार विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कई कार्य किए गए हैं। इनसे राजस्थान विधानसभा की देश भर में अनूठी पहचान बनी है। ये नवाचार जनता और युवाओं को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से रूबरू कराते हैं, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व के प्रति भी जागरूक करते हैं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
1: प्रवासी पाली वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जिले में आओ गांव चले अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने अभियान के लिए जिला स्तर पर एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास जैसे जनउपयोगी कार्यों में प्रवासियों से सहयोग प्राप्त करना है। इच्छुक प्रवासी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सहयोग कर सकते हैं। जैसलमेर में आम जन तक पौधों की जानकारी और उपलब्धता के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पंच गौरव अभियान के तहत एक डिजिटल कियोस्क, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही उन्हें डिजिटल तरीके से पौधे खरीदने की सुविधा भी देगा। ये डिजिटल डिस्प्ले ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वन विभाग के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने ये जानकारी दी।
2: करीब 24 जो प्लांट स्पीशीज है उनके बारे में एक इंटरेक्टिव वे में हम इस कियोस्क के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। जो ये कियोस्क है हम कलेक्ट्रेट या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। तो इसके माध्यम से जो जितने भी पौधे हैं 24 पौधे उनके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, उसके यूजेस क्या है, उसे प्लांटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सरी का लोकेशन वगैरह भी इसमें इस कियोस्क के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहां से पौधे फिजिकली लेना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि लोग इसमें स्कैन करके लोग अपने SOID से परचेज कर पाए इस कियोस्क के माध्यम से।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज 17 मई से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और ये 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। ये अतिरिक्त मास सौर और चंद्र वर्षों के बीच के संतुलन बनाने के लिए लगभग हर तीसरी वर्ष आता है। इस महीने को बहुत पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना और दान पुण्य करना, व्रत करना, जप करना, इन सब का बहुत महत्व माना जाता है। अधिक मास का आज प्रारंभ होना तो है आज की बात, लेकिन आज के दिन का इतिहास क्या कहता है, इस पर भी हम नजर डालते हैं।

0: श्रोताओं, इतिहास में चलने से पहले एक नज़र फिर से इस पर डालते हैं कि ये जो आज का दिन है बहुत ही खास है। लगभग हर 3 वर्ष में आने वाला ये काल जो शुरू होने वाला है आज से, मानव प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा विराम है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, संबंधों और जीवन दिशा का शांत मन से पुनर्मूल्यांकन कर सके। सनातन संस्कृति में पुरुषोत्तम का अर्थ है अपने सामान्य पुरुषार्थ के स्तर से ऊपर उठकर उत्तम की ओर अग्रसर होना। ये पुरुषोत्तम मास आज से शुरू हो रहा है और ये मास मनुष्य को अपनी दुर्बलताओं, भौतिक आकर्षणों और नकारात्मक नेगेटिव जो आपकी प्रवृत्तियां होती है उनसे ऊपर उठकर आत्मिक स्पिरिचुअल उन्नयन की प्रेरणा देता है। स्वयं के भीतर झांकने का और जीवन को बेहतर बनाने का ये अवसर बहुत ही सुनहरा अवसर है। मनुष्य जो कि वर्षों तक संसार की आपाधापी में कई प्रकार के कर्म करता रहता है, कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, कुछ विवेकपूर्ण होते हैं तो कुछ आवेशपूर्ण होते हैं। पुरुषोत्तम मास मानो ये संदेश देता है कि व्यक्ति कुछ समय रुक कर स्वयं को देखें, अपने कर्मों को तोले, अपनी जो कमियाँ हैं उनको सुधार करे और इसी कारण इस मास में जप, तप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिंतन को विशेष महत्व दिया गया है। श्रोताओं,
1: तो चलिए करते हैं आज के दिन के इतिहास की बात। 17 मई 1975 का दिन था जब जापानी महिला श्रीमती जुनको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी।

श्रोताओं, आज ही के दिन 17 मई 1987 में जब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास ले लिया था।

17 मई 2000 जब रूसी सांसद ने ऊपरी सदन फेडरलिस्ट्स में लिस्ट में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की।

0: श्रोताओं, 1949 के दौर की बात करें तो आज ही के दिन यानी 17 मई के दिन भारत ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह में बने रहने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया था।
1: और 17 मई 2010 का दिन था जब भारत ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप से परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल अग्नि 2 का सफल प्रक्षेपण किया।
0: और इसी साल यानी 2010 में जब भारतीय बॉक्सर्स ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सभी 6 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच डाला था।

प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आज के दिन विशेष की। आज यानी 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। दोस्तों आधुनिक युग में फोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की पहली जरूरत बन गया है। इनके बिना जीवन की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। आज के दौर में जब ये सब चीजें इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसायिक जीवन तक में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुकी है। पुराने दौर में जहां किसी से संपर्क साधने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं आज मोबाइल और इंटरनेट ने इसे बहुत आसान बना दिया है। कुछ ही सेकंड्स में अब हम सात समंदर पार बैठे अपने परिवार और सगे संबंधियों से संपर्क कर लेते हैं, यहां तक उन्हें देख भी लेते हैं। यही है दूरसंचार की क्रांति, जिसके कारण भारत आज विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ होने की पूरी तैयारी में है। इस दूरसंचार क्रांति के कारण न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण भारत में भी टेक्नोलॉजी से जो है वो ग्रामीण भारत भी टेक्नोलॉजी से लबरेज होता जा रहा है। विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई 1865 में शुरू हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 1969 से हुई और तब से ही हर वर्ष 17 मई को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूरसंचार क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने न केवल देश की छवि बदली बल्कि देश के विकास को रफ्तार दी और देश को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में भी ये मील का पत्थर साबित हुई। दूरसंचार तकनीक आज हमारे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में समृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। इस सेक्टर में हो रहे निरंतर विकास से प्रभावित होकर युवा वर्ग भी अच्छे करियर और अपने उज्जवल भविष्य का सपना संजोकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना।

दोस्तों आज यानी 17 मई के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये उस दबाव को कहा जाता है जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह की वजह से नसों की दीवारों पर पड़ता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पोषक तत्व पहुँचते हैं। आमतौर पर ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति से रक्त को पंप कर रहा है और रक्त को नसों में प्रवाहित होने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्तचाप की बात करें तो वो 120/80 होता है। अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में ही आता है। हाई ब्लड प्रेशर आज पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है और उसका कारण है निष्क्रिय जीवन शैली, अत्यधिक तनाव, डायबिटीज, मोटापा, अत्यधिक धूम्रपान, वसायुक्त भोजन, जंक फूड। ये इन सब चीज़ों की वजह से जो है मनुष्य में हाई ब्लड प्रेशर के रोग की संभावना ज़्यादा रहती है। विश्व भर में उच्च रक्तचाप की रोगियों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और आज के दिन यानी 17 मई को जो ये उच्च रक्तचाप दिवस मना

मनाया जाता है। इसके माध्यम से पूरे विश्व में लोगों को इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए और इसके ठीक करने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये दिवस एक थीम के साथ मनाया जा रहा है और 2026 की इस दिवस की थीम है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। ये थीम सही रक्तचाप माप, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से उच्च रक्तचाप के प्रबंधन पर जोर देती है।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
8: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: श्रोताओं, दिन कोई भी हो, वो ऐसे ही खास नहीं बन जाता है, उसे खास बनाना पड़ता है। अब वो चाहे आपके नजरिए से खास बने या चाहे आपके तरीके से, कोशिश तो दोनों ही केसेस में आपको करनी ही होती है। वहीं फिर जब बात संडे की हो, रविवार की हो, छुट्टी वाले दिन की हो, तो उसमें तो जतन करना बनता ही है। और इसीलिए नमस्कार कार्यक्रम में हर रविवार हम हाजिर होते हैं लेकर आपका पसंदीदा सेगमेंट मेहमान का रविवार। श्रोताओं, आज की हमारी खास मेहमान बेहद ही खास हैं, एक सुरीला एहसास है और फिलहाल हमारे पास ही हैं, फोन आउट के जरिए हमसे जुड़ चुकी हैं डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, भिंडी बाजार घराने की शास्त्रीय गायिका और वर्तमान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में संगीत विभागाध्यक्ष HOD के पद पर हैं। बतौर कलाकार के रूप में आपने कई शहरों के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी प्रस्तुति दी है। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियां भी आपकी ढेर सारी हैं और राजस्थान में भिंडी बाजार घराने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और प्रचार प्रसार करने वाली एकमात्र महिला कलाकार के रूप में राजस्थान सरकार की राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा संगीत के क्षेत्र में राज्य के उच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, फोन आउट के जरिए गुफ्तगू करने का हमें उनसे सौभाग्य मिला है और हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, मेहमान का रविवार नमस्कार कार्यक्रम के सेगमेंट में डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है समस्त आकाशवाणी टीम की तरफ से।
1: नमस्कार नेहा जी, और मेरे सभी श्रोताओं को भी बहुत नमस्कार, हैप्पी संडे।
0: जी बिल्कुल,
1: मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी संडे आपको भी। और सेगमेंट की शुरुआत में ही मैं आपसे पहला जो प्रश्न करूंगी वो यही है कि आप इस व्यस्तता में रियाज को साथ लेकर चलते हुए कैसा अपना रविवार जो है वो खास मनाते हैं मैम?
1: ये बहुत डाइवर्स है, बहुत वेरियस है, लाइक हमेशा एक जैसा रविवार नहीं निकलता है। कई बार मैं अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर रही होती हूँ, कई बार मैं किसी जर्नी में होती हूँ।

0: कई बार मैं जोधपुर में नहीं होती हूँ, जैसे आज मैं उदयपुर में हूँ। मेरा घर उदयपुर है और 2018 से मेरी जॉब जो है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो मैं 2018 से वहीं, वो मेरी कर्मभूमि है,
1: जी
0: उदयपुर मेरी जन्मभूमि है। तो उदयपुर में जब जब मेरे संडे होते हैं, थोड़े कभी लेजी से होते हैं, आज
1: जी
0: थोड़ी सुस्ती है और
1: अच्छा
0: अदरवाइज यहाँ भी घर के कई काम होते हैं, तो बहुत मेहमान यहाँ, थोड़ा हमारे रिलेशंस और ये सब हैं, तो कई गेस्ट होते हैं।
1: जी
0: वेरियस वेरियस मूड्स ऑफ संडे।
1: जी पर कुल मिला के
0: बिल्कुल
1: व्यस्त तो आपका संडे भी रहता है, तो आप
0: बिल्कुल
1: लेकिन उसे थोड़ा सा अलग बनाने के लिए किस तरह से प्रयासरत रहती हैं और कितना खास उसे बना पाती हैं, ये भी हमारे श्रोताओं से साझा करें।

0: कितना खास उसे बना पाती हैं, ये भी हमारे श्रोताओं से साझा करें।
1: बिल्कुल खास देखिए वैसे तो ज्यादातर ये होता है कि कोई मुझे अगर कोई असाइनमेंट दे रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वैसे खास हो जाता है। कई बार ये होता है कि संडे ही देख करके लोग किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं कि आप मैम फ्री होंगी तो वो उस कार्यक्रम में बुला लेते हैं। कभी मेरा किसी संडे को यहाँ उदयपुर में कभी परफॉर्मेंस वगैरह हो जाती है
0: जी,
1: और कई संडे मैं फैमिली के साथ बिल्कुल उसको टाइम को बहुत किसी आउटिंग पर या ऐसे उसको डिजाइन इस तरह से करते हैं कि थोड़ा समय जो है वो खुशनुमा जाए, क्योंकि बहुत व्यस्तता तो रहती ही है, सभी की रहती है।
0: बिल्कुल, तो आप ट्रैवल भी करती रहती हैं फिर, आपको उदयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर आना जाना आपका लगा रहता है। और तो जो संगीत का आपका पूरा ही प्रोफेशन है, शौक भी है, उसे आप कैसे उसमें जिंदा रखती हैं और किस तरह से उसको बिताती है उसके साथ में अपना दिन?
1: ये हमें शुरू से कहा गया है, जब से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी म्यूजिक में, मैं 9 साल की थी, तो मेरे गुरुजी ने तभी मुझे बताया था कि बिना सुने कुछ नहीं होता, बिना सुने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत गलत रास्ते पे जाना होगा। तो जितना आप अभ्यास करके उसको अमल में लाते हैं या अपने गले में चीजों को उतार पाते हैं, उससे ज्यादा आप सुन के बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये चीजें मैं अब अनुभव कर पाती हूँ। तो हम बच्चे थे, बहुत गहरी बातें थी, समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि ज्यादातर अगर बिल्कुल चलते फिरते मोड पर हैं, जहाँ पर एक जगह बैठकर साधना रियाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादातर सुनना, अच्छा संगीत सुनना और उसी से माइंड खुशनुमा भी रहता है।
0: जी, तो ये जो आपने बात की सुनने वाली, मुझे भी पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि ये सुनने वाली जो बात आपकी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगती है क्योंकि जैसे एक तो होता है कि संगीत में आपको गॉड गिफ्टेड आप हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन सुनने से जो हमने आज तक भी सुना है वो गीत, वो संगीत जो हमारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, फिर उसके हिसाब से आप जब भी गुनगुनाना चाहेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाता है और आप अभ्यास कर सकते हैं उससे।
1: और एक अच्छी बात यह है कि बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपके मन चाही नहीं होती है। कई बार बाहरी दुनिया से बहुत चीजें ऐसी आती है जिनको फेस करने से कभी अपसेट मूड होता है, कभी क्या होता है, लेकिन आप संगीत में अवस्थित रहेंगे, संगीत सुनते रहेंगे तो आप बैलेंस्ड रहेंगे।
0: बिल्कुल, बैलेंस्ड हमारा जो तन मन हो जाता है उस संगीत को सुनते ही। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपका पूरा ही प्रोफेशन उसी संगीत में है, संगीतमय आपका जीवन व्यतीत होता है। तो मैम, संडे का तो आपने हमें बताया कि आप बिजी रहती हैं, इधर उधर आपका ट्रैवल करना रहता है, और क्या आप कुछ और भी शौक रखते हैं संगीत के अलावा भी, जो इस दिन में आपको लगता है कि आप उनके साथ समय बिता पाएं?
1: मैं पढ़ती हूँ, शॉपिंग करती हूँ
0: जी,
1: कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत मतलब मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जो काम रोज कर रहे हैं, कई लोग संगीत को अलग से निकाल करके उस दिन एक पर्टिकुलर टाइम देंगे या जैसा भी देंगे
0: जी,
1: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तो क्योंकि संगीत में रोज हर दिन रहते हैं
0: जी,
1: तो मुझे कभी कभी जब बहुत अच्छा खाली समय मिलता है या मुझे चाहिए कि आज सुकून से कुछ पढ़ा जाए,
0: हाँ,
1: तो मैं अच्छा कुछ पढ़ती हूँ। और मुझे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से ही।
0: अरे वाह।
1: और बाकी शॉपिंग करती हूँ
0: जी,
1: मुझे बड़ा मजा आता है शॉपिंग करने
0: जी। आपने ये बात बताई कि स्पिरिचुअल जो आप चीजें मतलब जो किताबें हैं वो पढ़ना पसंद करती है, लेकिन वो भी बचपन से, तो अभी के दौर में तो मुझे लगता है कि लोग काफ़ी उससे जुड़ने लगे हैं और सुनते हैं पढ़ते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपका बचपन से उसके लिए रुझान रहा है, ये बहुत ही उम्दा बात है।
1: ये दरअसल एक होता है ना, आपका नेचर कैसा है, तो मेरा वैसे भी बड़ा शांत सा नेचर रहा है और संगीत में रहते हुए उस वक्त ज्यादा शांत था, अब शायद वो दुनिया से थोड़ा रूबरू होने के बाद में थोड़ा बदल भी जाता है, लेकिन मैं एक बचपन

0: जो है मेरा, मैं बच्चे की तरह निकला है वो। दूसरा, मेरे घर में साहित्यिक माहौल था
1: जी।
0: तो मेरे पापा के पास जो एक उनकी लाइब्रेरी है, दो अलमीरा भरे हुए उनके पास जो किताबें हैं, उनमें ज्यादातर मैंने स्पिरिचुअल लिटरेचर पाया। तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये वो उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो
1: कनेक्शन बैठ गया सर से। बिल्कुल। तो आपने जो बताया आपकी शांत जो नेचर है वो पहले था, अभी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपसे बातचीत करके, जो जितनी सुरीला एहसास हमें महसूस हो रहा है, जितना शांत स्वभाव आपका आपकी बातचीत से झलक रहा है, तो वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है जी। और भूमिका जी, आपसे बातचीत के सिलसिले में जितना इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपसे हमें आपकी आवाज़ को सुन के भी प्राप्त हो गया है, उससे मुझे यकीन है कि श्रोताओं को भी इस बातचीत का भरपूर आनंद उन्होंने उठाया होगा, कहीं ना कहीं इस उम्मीद को भी संजोया होगा कि वे भी इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम जो संगीत प्रेमी हैं, संगीत का शौक रखने वाले कोई विद्यार्थी भी यदि हैं, तो वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किस तरह से अपने शौक को तालीम का रूप दे सकता है, किस तरह से अपना प्रोफेशन उसे बना सकता है। और आप JNVU संगीत विभाग की HOD हैं, तो यूनिवर्सिटी में वर्तमान में इसके लिए कोई प्रवेश प्रक्रिया आई हुई है, तो जहाँ से आवेदन कर सके संगीत प्रेमी विद्यार्थी, वो भी हमसे साझा करें
0: जी। वैसे कई तरीके होते हैं, मैं ओपनली एक बार एक बड़ा खाका बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल तो लोग हॉबी क्लासेस में जा रहे हैं और कई तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चले हुए हैं। हमारे समय में ऐसा होता था कि अगर आप क्लासिकल की ट्रेनिंग ले लेंगे, क्लासिकल वोकल इंस्ट्रूमेंटल जो भी है
1: जी,
0: तो आपका वॉइस कल्चर और आवाज की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आप कोई भी गाना गाने में समर्थ हैं।
1: अच्छा।
0: तो हम ऐसा करते थे कि जो बचपन से एक गुरु शिष्य परंपरा में, जो कि बिल्कुल रागदारी घरानेदार परंपराएं होती थी
1: जी,
0: तो उस पर जाते थे बचपन से ही, या 8-9 साल की उम्र से जहाँ से बच्चों को उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ढल जाते हैं, उसी वक्त उनकी शेपिंग हो जाती है
1: अनुशासन वाले माहौल में।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुझे आप ताज्जुब करेंगे, मैं जब क्लास में जाती थी तो मुझे 3 घंटे तक, मतलब, और मुझे कुछ विशेष कुछ उसमें ऐसा नहीं होता था कि आज मेरा यही सबक है या ये सिखाया जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं होता था कि सिखाया क्या जाना है, आज का क्या क्लास वर्क है, ऐसा कुछ नहीं होता था। और तब मैं इन सब चीजों को सिर्फ देख रही थी, क्योंकि स्कूल जाते थे तो वो एक अलग ढर्रा था। तो स्कूल में क्लास वर्क होता था, घर आके होमवर्क होता था, वहां बैठे रहते थे पता ही नहीं चलता था, 3 घंटे तक बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे।
1: अच्छा।
0: बस सुन रहे हैं, सर कुछ गा रहे हैं, वो किसी को सिखा रहे हैं ये। अब लेकिन ये होता था कि वहां बैठे बैठे उन 3 घंटे में कभी भजन सुना, कभी गजल सुनी, कभी कुछ और सुना, कभी कोई राग सुनी, कभी पलटे तैयार किया करवाए जा रहे हैं। तो वो सब कॉन्शियसली उस वो कब मेरे अंदर उतर गया इसका मुझे पता नहीं चला। मुझे धीरे धीरे जब मैं 10th 11th में जब मैं आई, और 11th में जब मुझे सब्जेक्ट का चुनाव करना था 11th में आकर के, तब तक मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मैं शायद इसी के लिए बनी हूँ।
1: अरे वाह।
0: मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट का चुनाव किया। तो मैं इसी तरीके से इस बात को बताना चाह रही हूँ कि बहुत चीजें हैं गुरु शिष्य परंपरा में आप सीख सकते हैं। आजकल कई हॉबी क्लासेस जो इस तरह से चल रही हैं वो भी होती हैं। आप स्कूल से ही एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं कि आपने आर्ट्स लिया और म्यूजिक लिया। तो हमारे यहाँ JNVU में अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू है, और इसमें अब NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन का मोड आ चुका है। सब्जेक्ट अभी भी 3 ही चुनने होते हैं जो कि BA की प्रवेश प्रक्रिया में होते थे, लेकिन सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता था, कोई कॉम्बिनेशन ग्रुप होता था। नाउ इट इज ओपन फॉर एवरी फैकल्टी, किसी भी फैकल्टी, किसी भी विषय, चाहे वो
1: किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहा हो, साइंस बैकग्राउंड,
0: साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट से है, कॉमर्स वगैरह, तो वो, लेकिन मल्टीपल क्रॉस सिलेक्शन में कोई सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये एडिशनल रहेगा सब्जेक्ट जैसे?

0: की आपने बताया, या
1: ये सब्जेक्ट जो होता है वो माइनर सब्जेक्ट में या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी या एक एक एक चीज और है स्किल, तीन तरह के ऐसे हैं जिसमें कोई बाहर की फैकल्टी से इस सब्जेक्ट को चूज करता है। अदरवाइज जो किसी सब्जेक्ट में विषय में ही जो डिग्री लेगा उस बच्चे को तो दो मेजर पेपर उसी विषय में, जैसे संगीत में अभी कोई दो मेजर विषयों का चुनाव करता है, दो मेजर पेपर का सॉरी, तो वो दो मेजर पेपर चूज करेगा, एक माइनर करेगा किसी और स्ट्रीम से।
0: अच्छा,
1: तो उसको दो मेजर चुनने पर बीए इन म्यूजिक की डिग्री दी जाएगी।
0: ओके,
1: एक साल या दो सेमेस्टर करता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल हो जाते हैं, चार सेमेस्टर हो जाते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा
0: जी,
1: और तीन साल पर डिग्री, चार साल पर ऑनर्स।
0: वाह, बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बीए इन म्यूजिक अलग से भी ऐसा हो सकता है, अगर दो मेजर, जैसा कि आपने बताया दो मेजर आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, पेपर रहते हैं म्यूजिक में। ओके, और उसके अलावा
1: ये है कि बच्चे अभी कुछ इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर सुन रहे हैं और म्यूजिक लेना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर जहां तक हो सके आप इसके कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स अगर लेंगे, जैसा दो मेजर पेपर म्यूजिक के ले लिए और माइनर में या तो फाइन आर्ट्स हो गया या साइकोलॉजी हो गया या ज्योग्राफी या फिर साहित्य का कोई पेपर हो गया, क्योंकि कला कलाओं से जो जुड़े हैं वो कला या साहित्य से ही जुड़ा हुआ कोई और भी विषय लेंगे तो
0: उससे फायदा भी होगा। हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं और कॉम्बिनेशन जो आर्ट्स में ही अगर बैठे म्यूजिक के साथ तो वो बढ़िया।
1: उसके अलावा अगर बिल्कुल किसी और स्ट्रीम में लेना है तो वो तो वैसे भी आपके लिए ओपन है ऑप्शन, क्योंकि स्किल और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ऐसा दो पेपर है जो कि आप थर्ड सेमेस्टर से आप उनका चुनाव कर सकते हैं
0: जी,
1: तो वो एक स्किल एनहेंसमेंट के लिए है। वो म्यूजिक का बच्चा हो तो भी साइंस का कोई पेपर ऐसा ऑप्ट कर सकता है या कॉमर्स का कर सकता है
0: जी,
1: और साइंस का है तो आर्ट्स का कर सकता है, तो ये तो ओपन है बिल्कुल किसी के भी लिए।
0: तो इसके लिए जो आवेदन करना होगा अगर किसी स्टूडेंट को, तो वो अभी से इसकी प्रक्रिया चालू है?
1: हाँ जी, ये 15 तारीख से, अभी जो 15 तारीख गई है और तभी से शुरू हो गई है
0: जी,
1: और ये पूरी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। बिल्कुल स्पष्ट है इस बार कि कोई हार्ड कॉपी या फॉर्म सबमिट करना नहीं है, वो ऑनलाइन ही होगा और काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही होगी
0: जी। ओके, और इसकी जो फीस होगी वो भी काफी मिनिमल ही होगी?
1: हाँ, फीस मिनिमल है और अभी लेट फीस के साथ, अभी मतलब विदाउट लेट फीस तो ये 25th तक इसकी डेट ओपन है
0: जी,
1: एंड विद लेट फीस इट वुड बी 1st June।
0: ओके,
1: 1 June तक ये
0: जी। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा आपसे बातचीत का, कि कोई भी संगीत प्रेमी स्टूडेंट, विद्यार्थी, शोधार्थी, कोई भी इसमें अपना स्किल एनहेंसमेंट भी करवा सकता है, कर सकता है, उसके लिए एनरोल कर सकता है और साथ ही जो डिग्री कोर्सेज हैं उसके लिए भी आवेदन कर सकता है
1: जी।
0: बहुत ही अच्छा आपसे बातचीत करके हमें लगा, और इस इंस्पिरेशनल और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातचीत के सिलसिले में आपसे हमारी जो रूबरू हुए हैं हम, बहुत ही अच्छा लगा। और हम श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश आखिर में चलते चलते सुनना चाहेंगे कि क्या, किस तरह से वो अपने इस शौक को तालीम में बदल सकते हैं।
1: देखिए, मैंने तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में जिंदा रखा है कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, बहुत शुरुआत में ही मेरे पिताजी ने कहा था कि कोई भी कला को अपने जीवन में साथ में जरूर रखना चाहिए, कोई भी आर्ट साथ में होनी चाहिए। तो वो कोई भी आर्ट हो लेकिन आपका वाकई में जीवन आसान बना देती है। बहुत पल ऐसे आते हैं जीवन में जब आप बहुत उलझे हुए होते हैं, शायद आप किसी से बात करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो कलाएं आपके साथ होंगी तो उनके माध्यम से वो समय जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है, आप उससे बाहर आ पाते हैं
0: जी। भूमिका जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपकी बात, आपकी जो आवाज़ है वो इतनी सुरीली है। हम चाहते हैं, हमारे श्रोता भी चाहते होंगे इस बात को कि हम आप

0: से कोई आपका पसंदीदा गाना आपसे सुने और उसी को हम फिर प्ले भी करेंगे।
1: अच्छा
0: जी,
1: एक सॉन्ग है सुनो का जो नाम पपी है, नहीं थोड़ा क्लासिकल
0: टेस्ट। जी क्लासिकल आपका टेस्ट है बिल्कुल।
1: मैं तो लाइन इसकी गुनगुनाती हूँ, आप इसे बजाइए श्रोताओं के लिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा मेरे ख्याल से।
0: जी
1: सुनो सजना पपी है ने कहा सबसे

0: वाह वाह, बहुत ही सुरमई आपकी आवाज़, उसमें हम बह गए, श्रोता भी अवश्य बह गए होंगे उसमें। आपसे बात करके हमें बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्य जो हमें ये मिला है इतना, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, हमसे रूबरू हुए, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। आप हमारे साथ में फिर से कभी बातचीत का जो दौर है वो कभी हमारे साथ बनाए रखें, और आज की इस सेशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरी आकाशवाणी टीम की तरफ से।
1: थैंक यू सो मच नेहा जी, मैं अवश्य, मुझे बहुत अच्छा लगता है आकाशवाणी पर आप लोग बुलाते हैं मुझे आना, और मैं खुद अभिभूत हूँ आकाशवाणी परिवार के इस प्यार के लिए
0: जी।
1: बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए
0: जी। हमारे साथ फिर से जुड़ते रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, हैप्पी संडे।
0: हैप्पी संडे टू यू टू मैम।

और दोस्तों प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें और आज के दिन की खास बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पेट्रोल और डीजल को बचाने का आह्वान किया है उसी के चलते हमारे शहर में भी पेट्रोल और डीजल बचाने का जागरूकता अभियान तेज हो गया है। और इसी दौर में शनिवार शाम पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी साइकिल पर गश्त के लिए निकले। जालोरी गेट से शुरू हुई इस साइकिल गश्त ने शहरवासियों को सिर्फ पेट्रोल और डीजल बचाने का ही संदेश नहीं दिया, इसके साथ साथ ये भी समझाया कि हमें पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, प्रदूषण से बचाना है। ये थी हमारी आज की खास बात।

और अब करते हैं हमारे आज की काम की बात। गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है, इतनी तेज कि हम इंसानों के शरीर तो पसीने से तर बतर रहने लगे हैं, लेकिन नदियों और समुद्र का जो पानी है वो एवेपोरेट होकर उड़ने लगा है। ये एक सुखद एहसास भी है कि मानसून भी जल्दी ही आएगा। बारिश की फुहारें जो हैं हमारे मन को इतनी गर्मी के बाद जब वो गिरती हैं तो आनंदित कर देती है, लेकिन बारिश के मौसम के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश के मौसम के साथ जब लगातार बारिश होती है तो घर में संद का माहौल हो जाता है। संद के कारण अपने घर के सामान के रखरखाव की, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो आज के काम की बात में हम बात करेंगे कि बारिश के मौसम में हम रुई के गद्दों को, तकियों को और अलमारी में पड़े हुए हमारे कपड़ों को किस तरीके से सुरक्षित रखें। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको नमी से निकाल करके धूप दिखाई जाए। रुई नमी बहुत जल्दी सोखती है, इसलिए धूप गद्दों को धूप दिखाएं, तेज़ धूप में रखें कम से कम 2-3 घंटे, ताकि उनके अंदर जमी नमी बाहर निकले, बदबू बाहर निकले। पंखे की हवा में रखें और जहां पर आप कपड़ों को रख रहे हैं वहां पर नेफ्थलीन बॉल्स या नीम की पत्तियां रखकर उन्हें थोड़ा सा नमी से और बदबू से सुरक्षित रखें। और चलते चलते आज हम 17 मई के दिन गजल गायक पंकज उधास को उनके जयंती दिवस पर याद करते हैं और आपको सुनवाते हैं उन्हीं की ये खूबसूरत गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें और गीत।

मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. आपने ट्यून किया है 102.1 एफएम. घड़ी में सुबह के 10 बजने को है और वक्त हो चला है प्रोग्राम बातें और गीत का. मैं लीना, मेरे साथ नेहा और सत्येंद्र, हम तीनों हाजिर हैं कार्यक्रम बातें और गीत लेकर. आज की इस बातें और गीत कार्यक्रम में सत्येंद्र ने दोस्ती पर गाने सुनवाने की बात की है और सत्येंद्र का कहना है कि जब हम तीनों दोस्त स्टूडियो से एक प्रोग्राम दे रहे हैं तो क्यों न दोस्ती पर ही करें. तो चलिए फिर हम तीनों दोस्तों की तरफ से दोस्ती पर ये पहला नगमा आपकी नजर करते हैं.

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिक तब लिथोट्रिप्सी मशीन से।
2: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
1: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोताओं, 102.1 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें और गीत। और लीना, आपने बताया कि हमने आज का जो सेगमेंट है उसमें चूज किया है, हम दोस्ती पर खूब सारी बातें करेंगे, उसी के आपको सतेंद्र गाने भी सुनाएगा। लेकिन क्यों, आज क्या कुछ खास इस दिन को हम मान रहे हैं या कैसे इसको आज हमने चूज किया है?
2: दोस्ती के लिए किसी खास दिन की जरूरत कहाँ होती है।
1: हाँ, तभी मैं सोचूं कि आज ना तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है ना नेशनल फ्रेंडशिप डे है।
2: दोस्ती का दिन हर रोज दिन होता है। दोस्तों की याद, ऐसा कोई दिन गया है जब अपने दोस्तों की याद ना आई हो?
1: बिल्कुल
2: नहीं गया ना,
1: नहीं गया। तो और खासकर, हाँ दीना, मैं बताऊंगी कि संडे जो है उसको तो आपको अपने दोस्तों के नाम करना ही होता है।
2: तो अधूरा है ना, छुट्टी अधूरी है जब तक आप अपने दोस्तों से बात ना कर लो, उनसे मिल ना लो, तब तक तो छुट्टी अधूरी है।
1: बिल्कुल।
2: और जहां तक किसी विशेष दिन का सवाल है, किसी विशेष ओकेजन का सवाल है, तो दोस्तों का आपस में मिल बैठ करके बात करना ही अपने आप में एक विशेष ओकेजन होता है ना।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो हमारे, अगर मैं कहूँ कि जैसे हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं, बैटरी लो होते ही और मोबाइल चार्ज हो जाता है, मुझे तो लगता है कि दोस्त अगर आपके सामने बैठा है तो वो आपका एक चार्जर है, है ना? आपकी लो होती बैटरी को वो चार्ज कर देता है एकदम से।
1: बिल्कुल, लो होती बैटरी को चार्ज कर देता है, आपको फ्यूल दे देता है, आप पे स्पार्क ला देता है।
2: जैसे हम जिस भी परेशानी, देखो जीवन है, परेशानियां उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं, तो जब हम किसी रिश्ते में बैठते हैं तो हमें उस रिश्ते से रिलेटेड कोई प्लस या माइनस बात ऐसी होती है जो हमारे जहन में चलती है। दोस्ती सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जिसके सामने बैठकर हम डिटॉक्स भी हो सकते हैं।
1: अच्छा, हाँ, अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। हाँ,
2: सारे मन की बात आप कर लो। हाँ, और दोस्त वही है जो आपकी शक्ल देखकर समझ जाए कि अंदर चल क्या रहा है,
1: आपका दर्पण है वो।
2: हाँ,
1: एक तरह
2: वो दर्पण है। तो दोस्त और दोस्ती, ये दो दुनिया के सबसे खूबसूरत मुझे शब्द लगते हैं। और दोस्ती के रिश्ते से खूबसूरत तो शायद कोई रिश्ता समझ ही नहीं आता हमें।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें लीना हमें बता रही है और हम लोग भी अच्छे से वो बातें सुनना चाहते हैं और भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। और अभी इंजॉय करते हैं ये दोस्ती पर ही एक और गीत।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नेहा, दोस्ती वो रिश्ता है जो हमें जन्म से नहीं मिलता, है ना?
2: नहीं मिलता।
1: दोस्त और दोस्ती हम खुद चुनते हैं।
2: खून का रिश्ता नहीं होता।
1: हाँ, ये खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन है खून के रिश्ते से बढ़कर।
2: बिल्कुल।
1: हमारे जीवन में हमेशा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बिना अंजाम की परवाह किए हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जब ये बात आती है कि बिना अंजाम की परवाह किए एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ खड़ा रहता है, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल या सबसे बड़ा प्रमाण है दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती।
2: बिल्कुल,
1: है ना? उसके बारे में अगर सोचो कि मतलब कर्ण ने जब दुर्योधन से दोस्ती करी, दुर्योधन का साथ दिया, तो वो जानता था कि वो उस पक्ष के साथ है जो भगवान के खिलाफ है, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ है। फिर भी दुर्योधन से अपनी दोस्ती निभाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमेशा हर दुर्योधन के फैसले पर दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। बस इसी को दोस्ती कहते हैं। पता है, एक बहुत सुंदर सी कोटेशन है कि उसके कर्जदार रहिए और वफादार रहिए।
2: क्या बात।
1: उसके कर्जदार रहिए और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी ना।
2: वाह,
1: है ना? तो युद्ध भूमि में जहां भगवान उसके सामने खड़े थे, वो जानता था कि उसका क्या हश्र होने वाला है। वो ये भी जानता था कि दुर्योधन गलत राह पर है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी कि अगर मैंने दोस्ती की है, सच्ची दोस्ती, तो मुझे उस दोस्ती को निभाना ही है, अपनी जान पर खेल कर भी क्यों ना निभा।
2: किसी भी हद तक गुजर जाना है और उसको हद को बरकरार रखा उसने अंत तक, पर जो उस रिश्ते में सुकून है।
1: हाँ, दोस्ती के रिश्ते में तो अभी तुम सत्येंद्र से किसी गाने के लिए भी झगड़ा कर रही थी ना, कि ये गाना पहले बजवा दिया, वो गाना पहले। ये भी एक नोक
2: छोटी मोटी तकरार है,
1: ये बहुत प्यारी लगती है। अभी भाई बहनों में हो ना, तो गद्दे तक ये उठा के मारने की स्थिति आ जाती है। लेकिन दोस्ती की जो ये तकरार है ना, ये बहुत प्यारी तकरार है, क्योंकि भाई यहाँ से तो माइक उठा के तो उसको मार नहीं सकती।
2: स्थिति तो ऐसे आ ही गई थी, मतलब भाई बहन भी ना हो तो भी दोस्ती में ये सब चीजें हो जाती है। बाद में सोचा जाता है कि अच्छा उसकी लग गई है।
1: नहीं नहीं, पर अभी तुम माइक पकड़ के रखना, अगला गाना सत्येंद्र तुम्हारी पसंद का ही बजवाने वाले हैं। ठीक है,
2: बिल्कुल।

0: लीना, दोस्त हमने जो बात की, दोस्ती का जो ये खूबसूरत एहसास है, सुकून भरा है, नोक झोंक है, तकरार है, लेकिन फिर भी सुकून तो उसमें है ही।
1: बहुत सुकून है।
0: और लेकिन उसकी जो पहचान होती है ना, उस पर अगर हम बात करें कि दोस्त हर कोई के हम उसे दोस्त कह सकते हैं?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम हर किसी को अपना दोस्त कह सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने दोस्ती के लिए राइट पर्सन आ, जैसे कहते हैं ना, हमने कई फिल्मों में ये बड़ा एक वैसा डायलॉग सुना है ना कि जब आपका प्यार आपके सामने आएगा तो दिल की घंटी बजेगी।
0: हाँ।
1: तो ना, दोस्त में भी मन हमें एक इशारा कर ही देता है।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है।
1: शायद ये दोस्ती के लिए सही व्यक्तित्व है
0: जी,
1: है ना?
0: जी दोस्तों, ज़िंदगी में जो हमारी मुलाकात होती है ना, तो वो काफ़ी सैकड़ों लोगों से हो सकती है, कॉलेज में, ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, सोशल मीडिया पर, लेकिन वो सभी आपके एक्वेंटेंस कहलाएंगे, परिचित कहलाएंगे। वो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में हाय हेलो आपको कर सकते हैं, और लेकिन जो दोस्त होंगे, जो आपके अच्छे मित्र बनने के लायक होंगे, वो वही लोग होंगे जो आपकी खुशियों में, आपके दुखों में, दोनों के गवाह बनते हैं। भीड़ इकट्ठा करने से बेहतर है कि आपके पास सिर्फ गिने चुने दो या तीन ऐसे दोस्त हों जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और एक कहते हैं ना कि किताबें और दोस्त जिंदगी में कम ही होने चाहिए, लेकिन लाजवाब होने चाहिए।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नेहा, पता है, दोस्ती एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम किसी भी दूसरे रिश्ते के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
2: नो कंपैरिजन,
1: कोई कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोस्त वो नहीं है जो सिर्फ आपकी खुशियों में, आपके सुख में, आपके एंजॉय में आपके साथ आए। दोस्त वो है जो आपके उदासी की वजह पूछता भी नहीं है, वो बस आकर के आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं हूं ना यार, चिंता छोड़, है ना। तो बात कुछ ऐसी है कि हम हमेशा कहते हैं कि समय के साथ दोस्ती करके चलो, समय के साथ चलो। तो जहां तक दोस्ती की बात करें तो ये यूं है कि वक्त की यारी तो हर कोई करता है। वक्त की यारी तो हर कोई करता है, मजा तो तब है कि वक्त बदल जाए पर यार ना बदले।
2: क्या बात है, क्या बात।
1: तो बस सच्चा दोस्त जो है वो हमारी जिंदगी का वो सितारा है जो अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकता है। मतलब वो सुख में तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन दुख अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, दुख है, तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा।
2: आपका मौन भी उसको समझ आ जाएगा।
1: उसको समझ आ जाएगा। तो ये जो दोस्ती का सितारा अंधेरे में चमकता है, उसी की चमक से जो है हमारी जिंदगी रोशन रहती है।

0: श्रोताओं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, लीना और मैं, काफ़ी सारी बातें हमने दोस्ती पे कर ली है. और दोस्ती को हमने शुरुआती दौर में ही बता दिया था कि वो एक आईना होता है.
1: बिल्कुल
0: आईना, दर्पण, आपकी परछाई कह दो. तो सच्ची जो दोस्ती होती है, मशहूर कहावत भी है कि दोस्त हमेशा आईने और परछाई की तरह होना चाहिए. कैसे? क्योंकि आईना जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता. वो आपकी कमियां आपके मुंह पर बताएगा, दुनिया के सामने नहीं बताएगा, लेकिन आपके मुंह पर बताएगा. आपको वो सब चीज़ें वही रिफ्लेक्ट करके देगा कि भाई ये चीज़ आप में कमी है, उस पर आप सुधार कर लो.
1: बिल्कुल
0: आपकी निंदा करेगा तो आपके मुंह पर करेगा ना, दूसरों के सामने नहीं करेगा लेकिन आपके सामने कर लेगा.
1: वो उसका एक तरीका है आपको करेक्ट करने का, ताकि आपकी जो कमी है वो दूसरों को ना दिखे, दूसरों के सामने आपकी कमी ना जाए.
0: वो नहीं चाहेगा कि आपकी थोड़ी सी भी इस तरह
1: दूसरों
0: से
1: के सामने कमी,
0: कमी जाहिर हो. और परछाई की तरह भी होता है, जैसे परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, तो उसी तरह से जो दोस्ती है वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ती. जिंदगी में अंधेरा छा जाए तब भी भले ही हमारी जो परछाई होती है वो छिप जाती है लेकिन
1: बिल्कुल
0: साथ नहीं छोड़ती है. वैसे ही सच्चा दोस्त उस अंधेरे में भी आपके साथ रहेगा, मोमबत्ती बनकर खड़ा रहेगा, लेकिन रहेगा हमेशा आपकी परछाई की
1: बिल्कुल
0: तरह.
1: रहेगा. और जहां तक दोस्ती का सवाल है ना नेहा, रोज मिलना या रोज बातें करना कोई दोस्ती की में जरूरी नहीं
0: बिल्कुल नहीं
1: है
0: है.
1: ना. मैं तो जानती हूं, मैं इस चीज को मानती भी हूं कि हम महीनों बात नहीं करते हैं, हम मिलते भी नहीं हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में ये एक जज्बा बहुत पक्का है कि मैं अगर परेशान हूं तो वहां पता चल जाएगा और
0: हाँ,
1: हमारी बात हो जाएगी,
0: खटका आ
1: है
0: जाएगा
1: ना.
0: वहां से
1: ये
0: कुछ.
1: तभी तो कहते हैं ना कि दोस्ती का फर्ज जो है, दोस्ती का फर्ज जो है वो कुछ इस तरह से निभाया जाए कि रहीम अगर भूखा हो तो राम से भी ना खाया जाए,
0: क्या बात
1: है
0: है,
1: ना. तो इतना पास रहना, सामने रहना, रोज बात
0: जरूरी नहीं.
1: करना, ये दोस्ती की परिभाषा नहीं है.
0: आपने बताया जैसे वक्त का दायरा खत्म, तो वैसे
1: हाँ
0: उम्र का भी दायरा
1: हाँ
0: खत्म.
1: बिल्कुल
0: ना तो इसमें उम्र देखी जाती है ना वक्त देखा जाता है, बस इसे निभाया जाता है.
1: निभाया
0: चाहे
1: जाता
0: वो
1: है.
0: आपसे कितनी भी उम्र में बड़ा है छोटा है, आप उसकी जो
1: हाँ
0: दोस्ती है उसको सलामत रखने की हर कोशिश करेंगे.
1: बिल्कुल निभाया जाता है. और ये पता, मतलब अपने मन में ये बात पक्की रखी जाती है कि हर हाल में जब उसे जरूरत है मुझे उसके साथ होना है.
0: खड़ा रहना है,
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: है ना, यही दोस्ती है.

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: श्रोताओं कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम बातें और गीत में। और काफी सारी बातें काफी सारे गीत हम दोस्ती के इर्द गिर्द करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। बिल्कुल। और लीना जैसा कि हमने बताया था पहले कि दोस्ती जो है वो इतना ख़ास रिश्ता होता है जिसमें खून का रिश्ता नहीं होता वो। और एक और बात है कि जिसमें हम कोई नो सॉरी नो थैंक यू जो बोलते हैं ना, एक फिल्मी डायलॉग है कि ऐसा सुनने में आता है कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता।
2: तो
1: इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये फिल्मी डायलॉग तो है लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम बदतमीजी करेंगे। बदतमीजी कर लेंगे तो दोस्ती में चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोस्ती में जो है हम एहसान नहीं उसका जताते हैं। एहसान नहीं जताया जाता अगर एक दोस्त ने मदद की है

0: वो हम अपना फर्ज समझकर वो करता है, उसे क्रेडिट लेने के लिए नहीं करता। तो और इसमें जब फॉर्मेलिटी औपचारिकता की दीवार ही नहीं होती, आप जैसे हैं वैसे ही अपने दोस्त के सामने रह सकते हैं बिना किसी दिखावे के। दिखा रहा है आपको आईना, लेकिन आपको दिखावा नहीं कर रहा है वो।
1: हाँ,
0: बिल्कुल, तो दिखाना और दिखावा में बहुत फर्क नजर
1: तो
0: आता है।
1: यहाँ ये भी एक बात है नेहा, कि हम जितने भी रिश्ते अपने जीवन में जीते हैं ना, उन सब रिश्तों में हमें कुछ पाने की या कुछ देने की चाहत रहती है ना। सिर्फ दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो इस अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर कुछ देता है और कुछ चाहता है ना, तो वो है सिर्फ सुकून,
0: सुकून दे
1: है
0: रहा है
1: ना।
0: आपको, थोड़े खुशी के पल दे रहा है।
1: ये कोई नेगेटिविटी नहीं है या ये कोई आलोचनात्मक बात नहीं है कि सारे रिश्तों में हमें कुछ देना या कुछ लेना ही पड़ता है। ये हमारा जीवन का एक रूटीन है ना, कि कुछ हमें देना होता है, कुछ हमें पाने की चाहत रहती है। लेकिन दोस्ती अगर कुछ देती है, दोस्ती में अगर किसी चीज का लेन देन है, तो वो है सिर्फ सुकून, साथ और खुशियाँ, है ना।
0: बिल्कुल
1: यही तीन चीजें हैं जो हमारा दोस्त हमें देता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त अपने दोस्त के लिए सिर्फ वक्त निकालते नहीं है, वो तो अपनी दोस्ती के आगे वक्त को देखते ही नहीं है। मतलब आपको अपने
0: क्या
1: दोस्त
0: बात है।
1: को बात करने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं
0: सब कुछ कुर्बान
1: है
0: है,
1: ना।
0: वक्त
1: सब
0: तो
1: कुछ
0: क्या
1: किसी
0: ही
1: भी
0: है
1: समय, अभी
0: सभी।
1: मैं तुमसे
0: हाँ
1: बात करूं अगर, तो
0: हाँ
1: मुझे ऐसा लगता है कि नेहा हो सकता है रेस्ट कर रही हो, नेहा हो सकता है। लेकिन अगर मैं और तुम दोस्त हैं, तो मुझे लगता है अगर सो रही होगी तो उठ जाएगी, मुझे बात करनी है उससे,
0: बिल्कुल, उसमें
1: इस
0: कोई
1: समय मुझे
0: दिखावा
1: उसकी
0: नहीं होगा,
1: जरूरत
0: इसमें कोई इस
1: है
0: तरह
1: ना।
0: की
1: इसमें
0: सोचना ये
1: हक
0: भी नहीं
1: है,
0: होगा। हक
1: अधिकार है इसमें,
0: जी,
1: है ना। और देने और लेने के नाम पर सिर्फ सुकून, साथ और खुशियां है ना।
0: बिल्कुल
1: इसीलिए दोस्ती का रिश्ता जो है दुनिया के हर रिश्ते से बिल्कुल अलग है।

0: श्रोताओ, मुझे लगता है कि जो दोस्ती है वो एक बहुत ही खास होती है, लेकिन दोस्त ना डस्टबिन होता है लीना।
1: क्या?
0: हाँ, और नहीं तो क्या,
1: कैसे?
0: इमोशनल डस्टबिन होता है। एक वो थेरेपिस्ट का कॉम्बो उसको कह सकते हैं हम। एक सच्चा दोस्त जो होता है आपकी जिंदगी का, वो इंसान होता है जो आपके सामने आप अपनी जिंदगी का सारा जो भी कचरा है ना, गुस्सा,
1: उसके सामने निकाल के रख सकते,
0: डिप्रेशन, रोना, बिना झिझक के उंडेल सकते हैं उसके ऊपर सारा स्ट्रेस भी। वो आपकी फालतू और बचकानी बातें भी ऐसे सुनता है जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, किसी किसी गंभीर थ्योरी पर वो रिसर्च कर रहा हो, उस तरह से वो आपकी बात सुनेगा साइलेंस के साथ में। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि अगर वो बोल रहा है तो हमें चुप रहना है। और डस्टबिन तो चलो ठीक है, ऐसे बोल दिया, इमोशनल डस्टबिन है कि सारी आपकी जो भी इमोशंस हैं उनको एक बार के लिए ले लेगा, इकट्ठा कर लेगा।
1: दोस्त और दोस्ती की यही तो खास बात है ना कि कुछ आप भी बोलने से पहले सोचना ही नहीं पड़ता ना।
0: हाँ, वो आपको प्योरीफाई कर देगा। हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सारी बातें शेयर करने से वो सब चीजें जो है पर्दा उससे हट गया और वो हल्का हो गया आपका दिमाग।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और सबसे खास बात ये है कि वो आपको जज नहीं करता, उन सब बातों को सुनकर भी जज नहीं करता। आप उसके सामने अपनी सबसे बड़ी गलती भी होगी ना, वो कबूल कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये मुझसे गलती हुई।
1: हाँ,
0: और अब वो जो दोस्त है आपको बिना जज किए बता सकता है कि आप आगे उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने अनुभव से वो बताएगा।
1: हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि जिंदगी हमें बहुत बेहतरीन दोस्त दे सकती है। हमारी जो जिंदगी हम जीते हैं, हमारे जो जीवन का सफर है, जिंदगी हमें बहुत बेहतरीन दोस्त दे सकती है। लेकिन एक सच्चा दोस्त अगर हमारे साथ हो तो वो हमारी पूरी

0: जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है।
1: क्या बात है,
0: है ना? तो अब तुम चाहे डस्टबिन कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये आज प्रूव हो गया तुम्हारी इस बात से कि दोस्तों को कुछ भी कहने से पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं
1: हाँ,
0: पड़ती।
1: दोस्त है,
0: हम
1: सुनना
0: कुछ
1: तो
0: भी
1: पड़ेगा
0: कहें
1: उसे।
0: नहीं, वो हमारा प्यार ही झलकता
1: बिल्कुल।
0: है ना, हमारा अफेक्शन ही झलकता है उनसे, हम कुछ भी कहें, है ना। और ये चीज़ तो है ही कि हम अपना पूरा दिल खोल कर रख देते हैं अपने दोस्तों के सामने। तो चलो फिर एक और गीत सुन लेते हैं दोस्ती के नाम पे।
1: बिल्कुल।

0: जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वही जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां लिखते हैं, यही है सार दोस्त का और दोस्ती के रिश्ते का।
1: बिल्कुल।
0: तो आज का हमारा दोस्त और दोस्ती का सफर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अनुमति दीजिए लीना माथुर,
1: नेहा रंगावत को
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें और गीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम मनवार।

हे श्रोता मन भावना, हे हिवडेरा हार, मीठे गीतांसू करा थारोड़ी मनवार। मनवार कार्यक्रम सुनण वाला सगळा हेताळू श्रोतांवरो घणे मान स्वागत अभिनंदन। गीत संगीत और रीत प्रीत रो रथ लेर हाजिर हूँ आपरो शब्द सारथी सत्येंद्र चारण। स्वीकार कराओ मारा राम राम।

सदर आकाशवाणी जोधपुर एफएम सनसिटी चैनल माथे आप सुन रहे हो कार्यक्रम मनवार। और मनवार कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिनरे माई आपने सुनन ने मिले मायड भाषारी मठोट और मिजाज। मनवार कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिनरे माई में आप तक पूगती करा लोक रंगरी बानगी और एक सु सवाया एक लोक गीत। तो रेडियो सेट री फ्रिक्वेंसी जकी है वा सेट कर ले रहा हूँ 102.1 एफएम माथे और जुड़िया रहे वो एफएम सनसिटी सुम। मनवार कार्यक्रम रो पहलो गीत आपरी नजर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक का हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: सदना अंतराल पछे मनवार कार्यक्रम रेण आंगणे एक बार भले आपरो घणे मान स्वागत। अंतराल से पहला आप गीत सुने हा, जिंड माई एक पंक्ति आई के सुन बागा का मोरिया, सुपना का राजकुमार, थारे रंग में रंग गई मैं तो और रंग ना डार। सदना सपने री बात आई ही इन गीत रे माई। जे आप बात करा पर राजस्थानी साहित्य या पछे संगीत री, तो आप पर अठे एडी परंपरा रही है के आप पर साहित्य संस्कृति रे मायने आपारे संगीत रे मायने लोक दोहारो और लोक गीतारो सपने ने आधार मानर घणोई सृजन हुयो है। सुपनेरी जकी कल्पनावा आपारे अठेरा नायक नायिकावा गीत रे मायने करता, वे कठे ही नायक नायिकाओं रो मिलन बतावता, तो कठे ही नायक नायिका जका एक दूसरे सु दूर है उनारे विरह ने शब्दा रे मायने पिरोवता। कणी नायिका जकी है वह सपने रे मायने नायक सु मिले और उनने रोकण रा जतन करती निगे आवे। के जिनने सपने देखती प्रकट भवे पिव आय, डरती आंख न मूंद हूं मत सपनो होय जाय। नायिका कहवे के जकेने में सपने रे माय देखती ही आज वो सामी खड़ो है और उनने देखकर मैं एक टक इन भांत देख रही हूं के आंख मीचता ही कठी पाछो जो को है आंखें ओझल नहीं हो जावे, कठी वो सपनों नहीं हो जावे।

काच केरी चिमनी अंतरियो लईजो तेल सांझ पड़े सिळगाईजो खेलाला चौपड़ खेल। नायिका कहवे के काच री जकी है वा चिमनी ले राईजो उन्हें जगार चौपड़ रो खेल खेलाला। सदना चिमनी जकी है वहां पर मरुधरा माथे उजास करण सारू घनी काम आवती ही। आज तो आपारी मरुधरा रे हरेक गांव ढाणी ताई बिजली रा कनेक्शन हो चुका है। हर घर में लाइटा जुपती दिखे, पर एक जमाना हो जब बिजली री सुविधा नहीं ही।

उन जमाने में हर गांव ढाणी में चिमनी री खास ठोड़ ही। चिमनी रात रा घरा में उजास करण ने काम आवती ही और आपारी मावा दादियां नानियां जकी ही वे चिमनी बनाउन री खास खामची होया करती। आपर घरा में कोई कांच री सीसी होती जिनरे ढक्कन जको है वो लोरो या पछे किणी धातु रो बण्योड़ो होतो तो उन ढक्कन रे मायने छोटो सो बागो कर र सूती कपड़े री एक छोटी सी बाटी जकी है वा बणा और उन ढक्कन में फसार उन चिमनी रमाए जको है किरासनी तेल भर देवता। किरासनी तेल वो तेल है जिके नापा घासलेट और केरोसिन रे नाम हुई जाना। इन भात केरोसिन सु भर उन चिमनी रे ढकना जको है वो जरूर कर देवता और उनने ऊपर बाट ने जगा देवता जने वा बन जावती चिमनी। और वा चिमनी जकी है आपारे घरा रे माई रात ने उजास रो काम करती।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: FM Sun City, FM Sun City,
2: FM Sun City, Sun City.

हुए या पछे कोई सूरवीर हुए, कोई कपूतारे चक्कर माए खुदरो नूर मत गवा जाए। और एड़ा ही दातार और सूरवीर लोक देवता पाबूजी राठौड़ हा। बाबूजी रसागे यहाँ पर धरती माते पांच प्रमुख पीर होया, जिकाने पांच पीर नाम सु यहाँ पर अठे पूजी जिया करे। के बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगाजी जेहा।

साथीड़ा आप सुने हा बार गीत जिनरो नाम हो रूपनगर। रूप मिनख रो उनने खुदरे वंश क्रम और अनुवांशिकता सु मिलिया करे, इनमें उनरी खुदरी उपलब्धि नहीं होया करे। मिनख री खुदरी उपलब्धि जकी है वा उनरे कर्मा सु कमायडो खुदरो नाम और पहचान होया करे। इन सारू चोखा कर्म करना चाहिजे और इन माटी री काया माथे थोतो गुमान नहीं करनो चाहिजे, क्योंकि आ काया जकी है माटी सु बणियोडी है और एक दिन माटी रे माई मिल जावनी है। लारे रेसी तो फगत आपरा कर्मा रे पाण बणायोडी आपरी पहचान और आपरो नाम। और मौत जकी है मृत्यु जकी है वा शाश्वत है। चोड़ा चोड़ा चालता धरणी पड़ती धाक, आंधी कालरी आवता बड़जड़ होया राख।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हंसा सुंदर कायारो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो है साहिब रे दरबार। साहिब रे दरबार तो जद जानो ही जे, पण आ दिनार माई हंसा काया मत है गुमान बिल्कुल मत कर जो, क्योंकि जेठ रो महीनो है, इदक मासो है, र बढ़ती जकी है, वा खुदरे चरम माते है, जोरदार आखरो तावड़ो पड़े है। अबे जका हंसा फूट रहम जा खुने बेई थोड़ा रंग बदलू हुआ है। इन बढ़ती रमाए घर रमाए बैठा रहे वो और ठंडी चीजा ने अरोगता रहे वो। तेज घमक तो तावड़ो चमके जाने साण, लेले रगड़क आवता लुआ लेवे प्राण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनवार। यह आकाशवाणी जोधपुर का FM सिंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20

0: पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ESI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का छठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। सातवीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा

0: रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के सुरों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी, कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच ना होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं, दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है, कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए।

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम ये गीत जो हैं, जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। श्रोताओ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को नमस्कार, और आज की इबारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेत रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नजदीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नजदीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफर संग प्रश्न पहेलियों का इंतजार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नजर नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूर संचार की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खोसी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियां अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है। ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफर, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो जरूर बताएं कि जब कोई नई चीज आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक जमाने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फोन किसको लगाया?

0: पंछी बनकर उड़ना है मुझे, ख्वाबों के बादल छूना है मुझे।
1: रोक सकेगी क्या ये दुनिया, अपनी मंजिल तक पहुंचना है मुझे। सखियों, आज नारी वाटिका कार्यक्रम में आप अपनी दो सखियों मधु बनर्जी और
0: मकसूदन के साथ चलेंगे आसमान की उड़ान के सफर पर।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: पंछियों की उड़ान, सुबह की पहली किरण, खुले आसमान में फैले बादल और उन बादलों को चीरते हुए उड़ते छोटे छोटे पंछी। कभी सोचा है सखियों, इन पंछियों की जो उड़ान है वो हमें क्या सिखाती है? ना कोई शिकायत, ना कोई डर, बस पंखों पर भरोसा और आसमान को छू लेने का हौसला।
1: ये नन्हे पंछी सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते मधु, बल्कि इंसान की टूटे हुए हौसलों को भी उड़ना सिखाते हैं। जब एक छोटा सा पक्षी अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसके सामने पूरा आसमान होता है, लेकिन साथ ही डर भी तो होता है।
0: हाँ मकसूदन, लेकिन फिर भी वो उड़ता है क्योंकि उसे भरोसा जो होता है, यदि गिरा तो फिर संभल जाऊंगा। शायद जिंदगी भी यही है, डर के बावजूद आगे बढ़ना।
1: पंछी हमें बताते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर हौसले जिंदा हो तो उड़ान कभी नहीं रुकती है।

0: से कि वो परिंदे जो है वो जब उड़ान भरते हैं ना तो उन्हें यकीन नहीं होता कि रास्ते आसान होंगे, लेकिन उन्हें अपने जो पंख हैं उन पर भरोसा होता है।
1: शायद यही आत्मविश्वास है जिंदगी में जीतने के लिए। हर बार मजबूत होना जरूरी नहीं, खुद पर विश्वास होना भी जरूरी है।
0: कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है। लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे और हालात भी कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है एक बार फिर कोशिश करके देखो।
1: और परिंदे कभी हवा रुकने का इंतजार नहीं करते, वे तूफानों में भी रास्ता बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ऊंचा उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा हौसलों की जरूरत होती है। मधु
0: सकारात्मक सोच जो होती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, वो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है मकसूदन। ये अंधेरे में उम्मीद ढूंढना सिखा देती है, हार में सीख ढूंढना सिखाती है और गिर कर फिर संभलना भी।
1: और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखिए, परिंदे शाखाओं पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करते हैं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी उसका आत्मबल ही है।
0: बिल्कुल सही कह रही हूँ सखियों। यदि रास्ते कठिन हैं तो समझ लीजिए कि उड़ान जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है। अपने सपनों को डर से मत हारने दीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो उड़ने का हौसला रखते हैं।
1: और परिंदों सा आत्मविश्वास रखिए, गिरेंगे भी संभलेंगे भी, लेकिन एक दिन अपना आसमान जरूर छू लेंगे। खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी उड़ान है।

अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सखियो, सपने देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सपनों का एहसास जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। आंखों में एक उम्मीद, दिल में एक चाह और कुछ कर गुजरने का हौसला भी।
1: क्योंकि सपने ही तो इंसान को आगे बढ़ना सिखाते हैं, वरना जिंदगी तो बस यूं ही गुजर जाती है।
0: बिल्कुल सच कह रही हो। कभी कभी एक छोटा सा सपना होता है ना, वो भी इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है मकसूदन।
1: और सपनों की सबसे अच्छी बात ये है कि वो किसी अमीर, गरीब, छोटे बड़े या उम्र को नहीं देखती। जिसके दिल में चाह हो वही उड़ान भर सकता है।
0: हाँ, सपने की उड़ान ही ऐसी होती है कि जब चाहे हम वो सपने देखते हैं और सपनों में उड़ान भर लेते हैं। उड़ने दो परिंदों को भी शोक हवा में, कि लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो बचपन के सपने तुम्हें याद है?
1: वाह क्या बात मधु। और कई लोग तो सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे।
0: हाँ, लेकिन जो लोग दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं ना, वो अक्सर खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर सफर में मुश्किल ना आए तो मंजिल का मजा ही क्या है। और अगर सपने अधूरे ना लगे तो उन्हें पूरा करने का जुनून भी कहां से आएगा।
0: बिल्कुल सही। कभी महसूस किया है तुमने कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें रात को सोने भी नहीं देते? बार बार दिल कहता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है सपने को सच करने के लिए।
1: हाँ, और वही सपने एक दिन इंसान की पहचान बन जाते हैं।
0: लेकिन रास्ता तो आसान नहीं है। सपना देखना आसान है, लेकिन कभी हालात रोक लेते हैं तो कभी लोग और कभी खुद हमारा मन का डर।
1: मगर असली उड़ान वही भरता है जो डर के बाद भी आगे बढ़ता है।
0: हौसलों की आग को

0: कम मत होने देना, रास्ते मुश्किल हों तो भी कदम मत रोकना, एक दिन यही मेहनत रंग लाएगी, बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना।
1: बहुत खूब, और सच भी यही है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ किस्मत नहीं मेहनत भी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि बिना मेहनत के तो सिर्फ ख्वाहिश बनकर ही रह जाते हैं, और सपने पूरे कैसे होंगे।
1: और मेहनत करने वाले को सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है।
0: हाँ, हार तो मिल सकती है लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो साथ का पता चलता है।
1: क्या बात, वहाँ कई बार इंसान अकेले भी पड़ जाते हैं, सही कहा मधु, और अपने सफर में, लेकिन शायद कुछ मंजिलें अकेले चलकर भी हासिल हो जाती है।
0: अपने सपनों के पीछे तो अकेले ही दौड़ना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर किसी को जो है ना हमारे सपनों पर यकीन नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सब हमारी बात को मान ले, जो हम सपना देख रहे हैं वो नहीं लगे कि हम सच कर सकते हैं।
1: लेकिन हमें खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है।
0: रख भरोसा खुद पर, इस पर ही बात याद आ रही है मुझे। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ ही लेते हैं रास्ते।
1: वाह क्या बात, और सच कहूं तो सपनों की उड़ान सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, ये खुद को पहचानने का सफर भी है।
0: बिल्कुल, जब इंसान अपने सपनों के पीछे चलता है ना, तो वो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है।
1: और फिर एक दिन वही लोग जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, सबसे पहले ताली भी वही बजाते हैं। मतलब
0: बिल्कुल, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता सखियो, हौसलों से उड़ान होती है।
1: बस इसी हौसलों के साथ चलते रहना, क्योंकि सपने देखने वालों की हार नहीं होती।
0: और हर नई सुबह जो है ना, वो कहती है कि एक नई उड़ान अभी आपके लिए बाकी है।

0: उड़ जानी उड़ जा तू। मकसूदन कई बार ऐसा होता है ना, पंछियों की उड़ान को देखकर हमारा भी मन करता है कि हम आसमान में उड़ें, उनके हौसले की कहानी को सुने।
1: और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो उड़ने से पहले ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे।
0: हाँ, पंछी कभी कुछ नहीं सोचते। काश हर लड़की भी ऐसे ही सपनों के साथ बेखौफ उड़ पाती।
1: क्योंकि एक लड़की की जिंदगी में भी किसी परिंदे जैसी नहीं होती है, उसे भी कई बार अपने हिस्से का आसमान पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो कि लड़की जो है वो भी पंछी और परिंदे की तरह ही होती है, एक चिड़िया से उसकी तुलना की जाती है। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी समाज की बातें, और कभी अपने ही सपनों को चुपचाप दिल में छुपा लेना।
1: लेकिन जब एक औरत अपने हौसलों से उड़ान भरती है ना, तब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरा घर रोशन हो जाता है।
0: जिस तरह परिंदे जो है ना वो खुली हवा में रास्ता बना लेते हैं सखियों, उसी तरह जो हिम्मत वाली महिलाएं होती है ना, वो हालातों में अपनी मंजिल छीन लेती हैं।
1: और औरतों की अगर भरोसा और सम्मान मिले तो वो टूटे हुए घर को भी फिर से बसा सकती है।
0: हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हालात ऐसे होते हैं कि कुछ बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद भी महिलाएं देखो ना हौसले के साथ में घर बना लेती हैं। उनके सपनों को यदि पंख मिल जाए तो फिर वो आसमान की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छुएंगी।
1: और उड़ान रुकनी नहीं होती, पंख काटने नहीं पड़ते, हौसले नहीं, क्योंकि हौसले आसमान से भी ऊंचे होते हैं।
0: पंखों से उड़ान थोड़ी होती है, हमारी उड़ान तो हौसलों से ही होती है। आज की जो युवतियां हैं ना, वो रुकना नहीं चाहती हैं। हर बच्ची पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और अपने नाम से अपनी पहचान बनाना चाहती है, यही तो उसकी उड़ान है।
1: और यही सबसे खूबसूरत बदलाव है कि अब बेटियां सिर्फ सपने देखती नहीं, उन्हें पूरा भी कर रही हैं।
0: कभी डॉक्टर बनकर, कभी अफसर बनकर, कभी अपने घर की ताकत बनकर, हर जगह अपनी उड़ान से एक नई इबारत लिख रही हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सखियों, महिलाओं ने तानों के तीर और जिम्मेदारियों के पिंजरों से निकलने के बाद ही जो अपनी जो ताकत है सपनों को देखने की, उसको पहचाना है।
8: नर्म लहजे में भी ताकत होती है, ये दुनिया समझने लगी है।
7: बिल्कुल,
8: औरत अब खामोश नहीं मजबूत दिखने लगी।
7: हाँ,
8: है
7: वो हर जगह मजबूती से खड़ी होने लगी है। और सच कहूँ ना तो एक औरत जब मुस्कुराते हुए मुश्किलों से लड़ती है ना, तो वो किसी उड़ते हुए परिंदे से कम नहीं दिखती।
8: क्योंकि उसे गिरकर भी संभलना आता है और टूटकर फिर से जीना आता है।
7: पिंजरे में रहकर भी जिसने सपने जिंदा रखे हो ना, वो एक दिन खुले आसमान तक पहुंच ही जाता है।
8: इसलिए हर लड़की को ये जरूर याद रखना चाहिए कि उसकी पहचान सिर्फ रिश्तों से नहीं, उसके हौसलों से भी होती है।
7: हौसला जो है वो दिल में रखना बहुत जरूरी है, तभी हम सपनों को सच कर सकते हैं। और जो अपने हौसलों की उड़ान पर भरोसा रखती है ना, उसी के लिए आसमान जो है वो खुला रहता है, तभी तो मुनिया खुले आसमान में उड़ चली जाती है।

0: सखियो, जब मुनिया जंजीरें तोड़कर उड़ती है ना, तो किसी सरहद का ख्याल कहाँ रहता है। और सरहदों की पार उड़ान सुनने में कितना विशाल एहसास है ना।
1: क्योंकि कुछ उड़ाने सिर्फ आसमान तक नहीं जाती, वो दिलों तक पहुंच जाती है मधु।
0: पंछियों को देखिए ना, उन्हीं मुल्कों की सरहदें जो हैं वो रोक नहीं पाती, न भाषाओं का फर्क, न बीच में नदी हो या तालाब हो, पोखर हो, पेड़ हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: वो बस खुले आसमान में अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जैसे पूरी दुनिया उनका घर हो।
0: परिंदों ने कभी नक्शों से रास्ते नहीं पूछे मकसूदन, वो हवाओं से दोस्ती करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: काश इंसान भी इतनी आसानी से दिलों के फासले मिटाना सीख जाता।
0: क्योंकि नफरतें जो है ना, वो सरहदें बना सकती हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा रास्ते बना लेती है।
1: और उड़ान सिर्फ पंखों की नहीं होती है, सोच की भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जब सोच बड़ी हो जाए, विशाल हो जाए, तो इंसान छोटी छोटी दीवारों से ऊपर उठ जाता है।
1: और जो अपने हौसलों को कैद नहीं होने देते, उनकी उड़ान अक्सर सरहदों के पार जाती है।
0: एक लड़की की ख्वाहिश भी तो ऐसी ही होती है, वो सिर्फ चार दीवारी तक नहीं रहना चाहती, अपनी पहचान को बाहर भी पहुंचाना चाहती है, तो वो घर से बाहर भी निकलना चाहती है, वो चाहती है कि उसको दुनिया जाने।
1: और जब उसे भरोसा मिलता है, तो वो अपने सपनों की दुनिया को खोल पड़ती है, पूरे आसमान में घूम पड़ती है ना।
0: और कहीं भी पहुंच जाती है, कभी किताबों के सहारे, कभी अपनी मेहनत के दम पर, अपने लिए एक नया आसमान चुन लेती है और परवाज कर लेती है।
1: उसे रोका बहुत गया, मगर वो ठहरी।

0: हवा जैसी रास्ता खुद बनाती गई।
1: सच, असली उड़ान वही होती है जो डर, बंदिश और सीमाओं से आगे निकल जाए।
0: और तब इंसान सिर्फ एक जगह का नहीं रहता, वो अपनी सोच से पूरी दुनिया का हो जाता है।
1: बिल्कुल, सरहदें जमीन पर बनती हैं, आसमान पर नहीं। इसलिए परिंदे जो हैं वो आज भी बेखौफ उड़ते हैं।
0: और शायद इसी जिंदगी में सबसे बड़ी खूबसूरती यही छुपी है कि सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता।
1: हाँ, तो जो पंछी है उनको भला कौन रोक सकता है? न नदियाँ, न पवन के झोंके, न बादल, न पहाड़, न पर्वत, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता।

0: पंछी नदियां पवन के झोंके कहां कोई सरहदें ने रोक पाती है सखियों, और इंसान जो है ना वो ऊंची ऊंची इमारतों में कैद हो जाता है। पंछी तो खुले आसमान में आजाद हैं, उनके पास धन भले ही नहीं है, महल नहीं है, फिर भी वे हर सुबह देखो ना चहचहाते हैं, गाते हैं, क्योंकि खुशी चीजों में नहीं आजादी में होती है। सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो कोई चिड़िया पेड़ की शाख पर बैठकर जिंदगी का गीत गुनगुनाने लगती है। वो हमें सिखाती है कि उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं हौसले भी तो चाहिए।
1: और कई बार जिंदगी हमें पिंजरे जैसी लगती है, जिम्मेदारियों का पिंजरा, रिश्तों का पिंजरा, अकेलेपन का पिंजरा, और कभी कभी अपने डर का पिंजरा। लेकिन याद रखिए, हर इंसान के भीतर भी एक पंछी रहता है जो उड़ना चाहता है, जो खुलकर जीना चाहता है, जो

0: सपनों की आसमान को छूना चाहता है।
1: पंछी कभी ये नहीं सोचता सखियों कि आसमान कितना बड़ा है। वो अपने पंखों पर भरोसा रखता है और ये भरोसा जो है वो उसे बादलों के पार ले जाता है। हम भी अगर अपने भीतर का जो डर है ना उसे हरा दें तो जिंदगी की हर बंद खिड़की बंद दरवाजा खुल जाएगा, हर अंधेरी राह में रोशनी मिल जाएगी और हम सुकून से जी सकेंगे।
0: तो आइए थोड़ा पंछियों से सीखें, कम में भी खुश रहना, हर हाल में मुस्कुराना और सबसे जरूरी खुले आसमान में सपनों की उड़ान भरना, क्योंकि आसमान सबका होता है, बस उड़ने का हौसला होना चाहिए। अपने पंखों को सपनों की ताकत दीजिए और उड़ जाइए उस आसमान में जहां डर नहीं सिर्फ उम्मीद हो
1: सिर्फ
0: और सिर्फ उड़ान हो।

0: सखियों, आने वाला वक्त हसीन हो और हमारी उड़ान कैसे सरोकार रखे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपना हौसला है ना वो बनाए रखें। जब कोई इंसान गिरकर फिर खड़ा होता है ना, टूट कर भी मुस्कुराता है, अंधेरों में रोशनी ढूंढ लेता है ना, तभी शुरू होती है उसकी असली उड़ान।
1: पंछी आसमान देखकर नहीं डरता, वह अपने पंखों पर भरोसा करता है। और इंसान जब खुद पर यकीन कर ले तो उसकी मंजिल भी आसमान जैसी होती है और वो वहां पहुंच जाता है।
0: उड़ान का मतलब सिर्फ दूर जाना नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी सीमाओं को अपने भीतर के पिंजरे के पीछे छोड़ देना है।
1: हर सपना एक उड़ान है, हर कोशिश एक उड़ान, और हर नई सुबह जिंदगी को फिर से जीने की उड़ान।
0: तो उड़िए मगर किसी को गिरा कर नहीं, अपने हौसलों को साथ लेकर, क्योंकि जो आसमान में उड़ते हैं ना, वो सिर्फ ऊंचे नहीं होते, वे आजाद भी होते हैं।
1: जिनके इरादों में जान होती है उसकी हर राह आसान होती है। डरते नहीं जो ऊंची उड़ानों से, उन्हीं की तो असली पहचान होती है।
0: जिंदगी में कभी रास्ते बंद मिले ना सखियों, तो आसमान की तरफ देखिएगा, कोई ना कोई परिंदा आपको फिर से उम्मीद देगा और जीना जरूर सिखा जाएगा।

0: सखी, उड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन ये उड़ना इतना आसान कहाँ होता है। इसके लिए सपने भी देखने पड़ते हैं और फिर उन्हें सच करने का हौसला भी रखना होता है और जुटे रहना पड़ता है जब तक उस ख्वाब जो है हमारा सच न हो जाए। और आपसे बातें करते करते देखे ना, हम उड़ान के उस सफर पर निकल चले हैं कि समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला।
1: वक्त हो चला है विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दें कि आज आपको मधुर गीत सुनाए कंसोल पे बैठे हमारे साथी नवनीत अहलावत ने, ट्रांसमीटर पर हमारे साथ रहे विक्रम सिंह भाटी और प्रेम किशोर सेन, कंट्रोल रूम से हमारे साथी रहे फारूक शेख
0: जी। अब आपकी अपनी सखी मधु बनर्जी और
1: मकसूदन को दीजिए
0: इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले किया जाएगा।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल

0: को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब युटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है।

0: इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।

0: प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल ध्यानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। शकुंतला रूपांतरकार और

0: शकुंतला।
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य।
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ, चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
1: अरे अरे, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो बुरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं।

0: उपाय ही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
1: नहीं, अभी नहीं छोड़ो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वस्थ हो जाओगी।
2: अच्छा
1: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
2: हाँ चलो माँ, चलना ही होगा। अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाले रथा कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
3: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है। उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
4: बचाइए बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
5: इन राक्षसों ने फिर सिर उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा।

0: क्या अनर्थ हो गया। लगता है अपने बेसुतपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कुफ की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
1: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना। तब तक मैं अर्घ्य का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
0: अनसुया
1: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
0: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
1: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
0: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
1: तो
0: तब मैंने उनसे प्रार्थना की।

0: अनुसुईया
1: आ गई प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
0: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
1: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
0: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुईया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
1: तो
0: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
1: फिर
0: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
1: चलो, इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
0: आओ अनुसुईया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
1: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
0: हाँ अनुसुईया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली। और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहाँ जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहाँ, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो माँ बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा,

0: शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
1: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
2: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
1: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
1: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
2: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
2: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
1: माँ, माँ,
2: प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।

0: पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
2: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
2: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तार कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: उसे फिदा तो

कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे भरे तालाब, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो उन्होंने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिलूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूँ उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलने नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: आजल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्राव, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
5: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा, बाबा।
2: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना। बेटी

0: और देख, पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
1: पापा।
0: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
1: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला। कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा?
2: प्रियपदा, आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
1: सखी,
2: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगी?
0: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
2: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
0: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो?
2: डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगल।

0: कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंदा
0: 1985 जमाना
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दूसरा आदमी जब रिलीज हुई तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
2: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरे आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए हुए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, जो हाँ। भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो,

0: मैं कहूंगा आपकी पिक्चर कभी ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी,
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है, ये चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा ये 8 फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी।
1: हाँ हाँ।
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: नीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ,
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारे घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग-जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेरा रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूंगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो

0: कैसे ग्लैमरेट और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह,
0: असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अच्छा गया। और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे दो दिन कम थे 15 हफ्ते से।
2: हाँ हाँ।
1: तो उन्होंने जर्जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ कि तरह को बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैथनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे को शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल।
1: बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दांत के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी से कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा जरा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूंगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था घर में, वो कुछ हुआ था ऐसा। मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारे लिए करो तो ज्योम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था, क्या मेरे साथ करो पिक्चर। ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है, हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ एक बार चला जाता था, साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते, भला आदमी, बहुत अच्छा आदमी था। उसे का शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था, शॉर्ट ही क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे, शॉर्ट ही कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर, मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली, वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है रमेश तलवार को, ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
2: मराठी,
1: मराठी में
2: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
2: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत से फटाफट करते थे
2: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
2: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया, जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
2: बाबा
1: उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
2: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
2: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता हूँ, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश भाई प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप,
2: बाबा।
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा डायलॉग एंड मेमोरिंग करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
2: हाँ ये कौन है।
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है

0: तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके,
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका, उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा, सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ, तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर। एल्बम वेल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं? अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूं। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था, 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड। गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है, ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है, लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आपको कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके सामने? मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूंगा तेरे। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था, तो वहां पे थे।

0: और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: तो बस इरा के लिए हाँ हो गया।
0: हाँ होगी, और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है थोड़ी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती।

0: जैसा कि रिद्धि अभी हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर फ्रेंड सर्कल्स में भी जो है उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि किस तरीके से हम खुद को हेल्थी रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है मंथली जो कैंप है वो भी लगते हैं, जहाँ पर आप अपना रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे जो भी श्रोता हैं उनके कोई फैमिली डॉक्टर्स हैं, तो उनसे भी वो लोग कंसर्न कर सकते हैं या फिर अपनी पूरी फैमिली को जो इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है रिद्धि कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में जो लोगों में हाइपरटेंशन है, खास तौर से अगर मैं बात करूँ यूथ की, तो वो वर्क प्रेशर जो रहता है उनका जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, तो उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से जो है वो अपना जो वो वर्क शेड्यूल है वो मैनेज नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनको एक प्रेशर फील होता है कि अरे यार मुझे इतने समय में ये काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्क प्रोफेशन ही नहीं रिद्धि, साथ ही साथ आप के जो पर्सनल काम होता है, जैसे किसी का कोई गोल्स होते हैं, किसी के कोई टारगेट्स होते हैं, तो वो प्रेशराइज होकर जो है वो उनको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप हेल्थी ही नहीं रहोगे तो आप उस गोल को अचीव करके भी क्या कर लोगे?
1: ये बात काफ़ी सच है कि जब इंसान हेल्दी नहीं होगा तो क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम में जो टारगेट ओरिएंटेशन है, जो लोग बंधे रहते हैं अपनी बंदिश में कि कैसे काम होगा या फिर किस तरीके से उनका वर्क लाइफ बैलेंस होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ही होता है विकास के, जो कारण है हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, वो मेजरली ये रहता है कि सबसे पहली चीज़ कि जो मोशन है, जो इंसान का फिजिकल मोशन है, वो बहुत कम हो जाता है आज के टाइम में। जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, हम देखते हैं कि दिन भर सिटिंग रहती है और जो लंच टाइम होता है वो मात्र आधे घंटे का होता है, उसमें भी
0: बिल्कुल
1: शायद कुछ लोग घूमते भी नहीं होंगे, क्योंकि लंच ऑब्वियसली
0: बिल्कुल
1: चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि घूमते घूमते लंच हो। तो अगर हम पूरे दिन में देखें, अगर आजकल तो हमारे फ़ोन में भी फीचर आ गए हैं कि अगर हम फ़ोन में काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स है, आपकी कितनी एक्टिविटी हो रही है दिन भर में, तो ये बड़ा आसान
0: बिल्कुल
1: तरीका अब तो
0: बिल्कुल
1: जुड़ गया है कि आप अपने फ़ोन से मॉनिटर कर सकते हो कि आपका कितना फिजिकल मोशन रहना है दिन भर में।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कर रही थी
1: आज के
0: आपने।
1: टाइम में अगर हम टेक्नोलॉजी से इतने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे फोन्स का बड़ा स्मार्ट वे में यूज़ करना चाहिए कि आप फिजिकली फिट कैसे रह सकते हैं।
0: और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को भी जो है वो फोन का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज का दिन संडे है और इस विषय
1: हाँ
0: पर जो है वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। और लगता है कि हमारे जो पहले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत।
1: हेलो,
2: हेलो। हाँ नमस्कार।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्कार।
1: क्या नाम है आपका?
2: हाँ मैं महबूब खान बोल रहा हूँ।
1: जी महबूब जी, बताइए, आपने आज का विषय सुना होगा, आज हम
2: हाँ विषय
1: हाइपरटेंशन पर
2: सुना
1: बात
2: है
1: कर रहे
2: मैडम।
1: हैं।
2: मैं दो दो चीज बताना चाहता हूँ। एक तो खान पान सही नहीं है और दूसरा है शुद्ध हवा। पहले अपने बुजुर्गों का पहले खान पान था दूध दही छाछ राबड़ी वगैरह वगैरह, इतने उनकी उम्र होती थी कम से कम 100 साल,
1: हाँ
2: कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है होती थी उनको, और वो अच्छी अपनी अच्छी जिंदगी बसर करते। अभी अभी अभी देखो जनरेशन में 20-25 साल के आदमी को शुगर होती है और ढाई हार्ट की तकलीफ होती है और भी अन्य बीमारी किडनी की तकलीफ होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि
2: और
0: जो
2: तो ये लोग क्या मेहनत नहीं करते ज्यादा और नशा करते आ रहा है, 10 प्रकार के नशा आता है, नशा करते हैं।

0: इसलिए इन्हें बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने महबूब जी के, अगर आप अपना
0: शुद्ध आवाज नहीं मिलती है, अपना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पेड़ चुपके चुपके चुपके पेड़ भी काटे जा रहे हैं, इससे शुद्ध आवाज नहीं मिल रही है।
2: जी सर, आपकी ये बात काफ़ी सच है कि मतलब पहले के ज़माने में जो हम देखते थे कि शुद्ध हवा बहुत ज़्यादा होती थी, और साथ ही में हम आज के टाइम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं शायद उनको भी कई बार डिजीज़ बड़े कम होते हैं, और जो यंगस्टर्स होते हैं घर के उनको डिजीज़ पहले लग जाते हैं। तो ये तो बात तो है कि पुराने ज़माने की जो ताज़ी हवा थी और जो शुद्धता थी वो आज के टाइम में तो नहीं है। तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो।
3: हेलो
2: जी सर, नमस्ते
3: जी, मैं शंकरलाल बोल रहा हूँ जोधपुर से।
2: शंकरलाल जी, आपने आज का विषय सुना होगा।
3: हाँ, बस ये जो इस समय से पहले हर चीज जब आ जाती है ना, तब बीमारी आ जाती है। मतलब एक तरह की ये बीमारियां नहीं है, ये एक तरह की फैशन हो गई है। मुझे बड़ा ताजुब होता है कि मेरे जो शॉप के पास में एक कोई 25 साल का आदमी जब दुकान खोलता है तो मैंने देखा कि वो अपने स्कूटी पे ये मटकी लेकर आता है। मुझे तो बड़ा ताजुब होता है, मेरे जो माता जी और जो मेरे पिताजी जब थे उस समय
2: जी।
3: वो कम से कम आधा किलोमीटर दूर से जहाँ पर एक ही टूटी होती थी पहले उसी मतलब उसी मोहल्ले में तो भर के लेके आते थे, और वो उसमें उनके तो मतलब अपनी शक्ति भी आपको पता चल जाती और शरीर की भी थोड़ी बहुत मालिश हो जाती थी।
2: ये तो बात
3: आदमी
2: है।
3: इतना आलसी हो गया है। उसके अलावा आप देखो, हम किसी शॉपिंग मॉल में भी जाएंगे तो अपना स्टेटस दिखाने के हिसाब से जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका बैग उठाने के लिए हम वहाँ के किसी आदमी को बोलेंगे, सर ये हमारा सामान हमारी गाड़ी तक पहुंचाओ। मतलब मेहनत करना कोई नहीं चाहता, ठीक है। दूसरा ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब 15-20 सालों के जो भी बच्चे होते हैं वो मतलब सब देखा देखी के हिसाब से वो स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब हमारा जो ये देश, हमारा जो फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, ये सब ये लाइफ स्टाइल के जब से ये बदलाव आया है तब से ये बीमारियां समय से पहले आ चुकी है।
2: जी सर, आपने ये बात काफी सच कही है कि अभी जो यंगस्टर्स है वो सिर्फ फैशन में या फिर शो ऑफ में भी कई बार प्रेशर में आके गलत तरफ जा रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो ये फैक्टर तो है कि आसपास के टाइम में, और होता है ना कि खुद को सोसाइटी के हिसाब से आपको शो करना है, क्या वो लेवल मैच कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये चीज़ तो देखने को मिलती है। और साथ तक जहाँ पर ये है कि फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो जैसा हमारे श्रोताओं ने अभी बताया। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोता, हम इसी विषय पर बात कर रहे थे, और जैसा अभी सर ने बताया कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है जो हम देख रहे हैं आसपास, अब बहुत कम हो गई है। पहले तो ये भी होता था कि शायद हम सब्जी लेने में भी बाहर जाते थे तो उसमें भी आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता था। आजकल हम देखते हैं कि सब्जी भी आपके घर पर डिलीवर हो जाती है, और बहुत आसानी से, बहुत एक बटन क्लिक करना है और आपके घर पर सारा सामान आ जाता है। तो हाँ, अभी ये हो सकता है श्रोताओं की, अगर आप भी अपने लाइफ में फिट रहना चाहते हैं और थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप खुद हुए चीजों में और खुद का ख्याल रखें, और साथ में गाने एंजॉय करने बहुत जरूरी है।
1: Exactly.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए पता है रिद्धि की जैसा कि हमने अभी बात करी हाइपरटेंशन के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सुनने के बाद जो भी आज का हमारा इंटरव्यू था जो कि डॉक्टर साहब ने बोला कि किस तरीके से जो है आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हैप्पीनेस यानी कि आप छोटी छोटी चीजों में जो है वो खुशियां ढूंढना सीखें।
3: हाँ ये तो है विकास के हमारी लाइफ में अगर कोई चीज बेटर हो सकती है तो वो है हमारी खुद की खुशी। बहुत बार होता है कि जब ऐसा लगता है कि यार दिन हमारे फेवर में नहीं जा रहा है या फिर स्ट्रेस हो रहा है टेंशन हो रही है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स पे गाने चलाओ थोड़ी देर खुद के मतलब खुद से ही डांस कर लो अपनी जगह पे बैठे बैठे और मुझे खुशी होती है ना कि जब कोई आप एकदम पार्टी सॉन्ग सुन रहे हो एकदम लाइवली सॉन्ग सुन रहे हो अगर गाना ना भी हो तो एटलीस्ट कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जो आपको हंसा दे या फिर कोई ऐसी पुरानी फोटो देख लीजिए अपनों की जो आपके मन में थोड़ी सी खुशी की झलक छोड़
2: और साथ ही साथ रिद्धि जो भी हमारे यूथ है जो भी वर्किंग पर्सन है तो अपनी जॉब लाइफ में जो है वो थोड़ा सा प्रेशर कम फील करे और हमेशा दिमाग में यही रखे क्या है ना यार हो जाएगा कर लेंगे।
3: हाँ तो, और ये चीज भी देखी जाए ना बिकॉज तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम बना
2: जितनी हम बना लेते हैं बिल्कुल
3: क्योंकि आसपास देखे तो बड़ी खूबसूरत जिंदगी मिली है हमें और जो खुशियां हैं वो ढूंढने पे मिलती हैं। आज के टाइम में तो यही हो गया कि उसको ढूंढो तो आपको मिल जाएगी और अगर आप नहीं ढूंढना चाहते तो फिर कॉमन लाइफ से
2: कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उनको बिल्कुल स्मूथली सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करें।
3: तो हाँ दोस्तों अगर आज का ये हाइपरटेंशन का दिन है तो हम आपको यही एडवाइस देना चाहेंगे कि ये जो हाइपरटेंशन है वो आपकी खुशियों से बहुत कम हो सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला गाना।

0: से विदा लेने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिद्धि शाम के ठीक 6 बजने वाले हैं और हम फिर मिलेंगे आपसे ठीक शाम 5 बजे आपके अपने इस कार्यक्रम युववाणी में। और आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में दो आवाज़ें आपके साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि मैं विकास और मेरे साथ थे
1: और मैं हूँ श्रोताओं रिद्धि। और मेरी यही आशा है कि ऊपर वाला आपको हाइपर टेंशन देकर नॉर्मल टेंशन से भी हमेशा दूर रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे अच्छे गाने हमेशा सुनते रहें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम में युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात

0: के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है गुड इवनिंग जोधपुर।

0: अभी आपने सुना बादल फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरूला और अनमोल की आवाजों में।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आपने सुना दूध का कर्ज फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
3: कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आपने सुना कुर्बान फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: साथियों, वक्त की पेशानी पर लिखी तकदीर को भला कौन मिटा सकता है, लेकिन ये तकदीर भी बदल जाती है, सारी तदबीरें उलट जाती हैं जब हौसलों की बुलंद परवाज आसमां को छूती है। कुछ ऐसे ही खुशकिस्मत होते हैं वतन के वो पासबां जिन्हें वतन की खिदमत का फक्र हासिल होता है। वतन की हिफाजत जिंदगी का मकसद बन जाती है, फिर जिंदगी कम ही सही खुशियों से गुजर जाती है। मौत उन्हें फिर क्या डराएगी, जिंदगी जिनके कदमों तले होती है। मुस्कुराएं तो वतन की खातिर, मर मिटें तो वतन की खातिर। आइए आज नमन करें राजपुताना राइफल्स की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बांके सिपाही हवलदार दयाराम को। राजपुताना इन्फेंट्री के वो होनहार सिपाही जिन्हें न तपती रेत की परवाह, न लंबे रास्तों का खौफ, न सूरज की तपिश की चुभन, जिन्होंने जब जब केसरिया बाना पहना, हथियार हाथ में थामे।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जख्म सीने पे खाए लेकिन कभी दुश्मन को पीठ न दिखाई, ऐसी माटी के सपूत थे हवलदार दयाराम, जिनका जन्म अविभाजित भारत में 28 मार्च सन 1922 को हुआ, जब स्वतंत्रता को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए जा रहे थे। एक तरफ नन्हे बालक दयाराम की परवान चढ़ती उम्र, तो दूसरी तरफ देश में फिरंगी सेना की चहलकदमी और धीरे धीरे देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कब दिल में घर कर गया पता ही न चला। देशभक्ति की अलख दिल में जगी, जिसने दयाराम की जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी।

जिंदगी के सफर की चुनौतियों को पार कर अपनी कुशलता को सिद्ध कर दयाराम सेना में शामिल हो गए। उन्हें पहली राजपूत इन्फेंट्री सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की चौथी गार्ड में बतौर सैनिक भर्ती कर लिया गया। हालांकि ये खिदमत बतौर अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिम के तौर पर थी, लेकिन ये तजुर्बा यकीनन देश के काम आया। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के तमाम अनुभवी सैनिकों में दयाराम भी अग्रणी थे। सन 1947 में तमाम कोशिशों और शहादतों के बाद देश आजाद हुआ। चेहरे पे मुस्कान आई, लेकिन विभाजित भारत की सरहदें फिर भी बेचैन ही रहीं। इस अजीम और शान मुल्क से अलग हुए राष्ट्र की प्यास बुझने का नाम न लेती। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सरहदों में खतरे की सुगबुगाहट को भांपा गया और जश्न आजादी के दरमियान ही भारतीय सेना को उत्तर पश्चिमी सरहदों की तरफ रवाना होने के आदेश जारी कर दिए गए और ये सिलसिला चलता ही रहा।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और कश्मीर के रास्ते भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों को भी रवाना कर दिया गया था, जिससे शत्रुओं पर चौतरफा निगरानी रखी जा सके और सेना को कवर फायरिंग भी दी जा सके। 6 फरवरी सन 1948 की वो सुबह जब हाड़ कपा देने वाली ठंड और चारों ओर बिछी बर्फ में रास्ता बनाना, चलना और मिशन को अंजाम देना खासा चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ हवलदार दयाराम नौशेरा से उत्तर की तरफ टेनधर के इलाके में बढ़ने लगे।

ऐसे मौसम में शत्रु के कहीं भी छुपे होने का अंदेशा भी गहरा था। खबर पक्की थी कि दुश्मन सैनिकों ने सुबह 6:40 के लगभग टेनधर की चौकियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें चौकी पर तैनात सैनिक, उनके पोस्ट, असलाहों के जखीरे सभी इस खतरे की जद में आ गए। अपनी सैनिक टुकड़ी को हवलदार दयाराम ने दो तरफा हमले का सुझाव दिया, जिससे दुश्मनों के भागने के रास्ते बंद किए जा सकें और उन्हें वहीं घेर कर ढेर कर दिया जाए।

फौजी साथियों, आज के विशेष जय वाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा,
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस बीच ये खबर भी मिली कि तीसरी पैरा बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक और कंपनी को टेनधर रवाना कर दिया गया है। देश की सरहद की सुरक्षा के मद्देनजर टेनधर की ये चौकी साथियों बेहद ही खास थी, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों की गतिविधियों को देखा और परखा जा सकता था, हमलों का जवाब दिया जा सकता था और जम्मू कश्मीर की सरहद को सुरक्षित भी किया जा सकता था। भारी शेलिंग के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना हवलदार दयाराम ने युद्ध के मोर्चे को संभाला। सरहद पार से उठे जंग के इन शोलों की लपट इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर और सरहदी गांवों में भी गोलियों की गड़गड़ाहट शत्रु की मौजूदगी का एहसास कराती थी। एक पल को खामोशी तो दूसरे ही पल आसमान में घुलता बारूद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलता रहा। मौसमी रंग में नहाए चनार के दरख्त बेरंग नजर आते थे। जिंदगी सिसकियों की सांस भरती रही। भला उन नरगिसी फूलों, उन सफेद झीलों, उन प्रेम के पंछियों और पुरसकून वादियों को नफरतों से क्या लेना।

तक अपने सहायक सैनिकों के साथ पोजीशन ले चुके हवलदार दयाराम ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से युद्ध करते हुए दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते शोलों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही। भारतीय सेना की इस चौकी में कई सैनिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल बाकी सैनिकों ने कवर देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार बल्कि लगातार पांच बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए, फिर भी मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और हथगोले फेंक कर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे।

इस बीच उनकी पोस्ट पर लाइट मशीन गन, जिसे LMG या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने LMG को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वहीं मार गिराया और बाकी बचे पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 3 शत्रु सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े, लहू

लतपत दयाराम ने इनमें से दो को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हथगोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी परखच्चे उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ टेनधर की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया, बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर चार और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और टेनधर की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की एक और जीत का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया गया। ये फतह भारतीय सेना की कामयाब मुहिम का एक ऐसा हिस्सा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंगी हवाओं के रुख को मोड़ने का ताब रखती है। जब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर नजरें हों तो जीत का परचम लहराता ही लहराता है। हम एक बार फिर सलाम करते हैं हवलदार दयाराम को।

फौजी साथियों, 6 फरवरी सन 1948 को नौशेरा से सटे इलाके के टेनधर सीमा चौकी को महफूज रखने, यहां फतह हासिल करने और इस युद्ध में सेना के सफल संचालन, अदम्य साहस, अद्वितीय कूटनीतिक क्षमता, कार्य कुशलता, अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए हवलदार दयाराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे ट्रिप में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटिव चैनल है।

आइए सुनते हैं अब इस गीत की धुन को फिल्म तीसरी कसम से। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज मुकेश की।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म मॉडर्न गर्ल से, आवाज सुमन कल्याणपुर और मुकेश की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत रवि किशन का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साज और आवाज, क्लेरिनेट पर थे मास्टर इब्राहिम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हवा महल।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका।
1: मुन्नू की माँ, अरे भाई मुन्नू की माँ
2: आ गई स्कूल से? मुन्नू नहीं आया।
1: अरे बताया तो था कि मुन्नू पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसे कमजोर लड़कों को हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी छुट्टी के बाद रोककर खुद पढ़ाती है।
2: मास्टर का लड़का और कमजोर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद मास्टर होकर भी अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन तुम लड़के को घर में पढ़ाओगे कैसे? तुम्हें तो अपने सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। लेकिन अब मैं देखूंगी कि तुम
1: फिर गुस्से का दौरा पड़ा मुन्नू की माँ। देखो जल्दी से क्रोध हरण शलाका मुंह में रखो वरना अनर्थ हो जाएगा।
2: अरे हाँ, मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था। लो ये रख ली मुंह में मैंने क्रोध हरण शलाका।
1: ठीक, अब तुम इसी तरह इसे मुंह में दबाए 15 मिनट के लिए उस कमरे में जाकर बैठ जाओ। 15 मिनट के लिए जुबान को एकदम बंद रखना। कैसा चैन है। अरे आज 6 बजे मैंने रमेश और उसकी पत्नी को चाय के बहाने से बुलाया था, पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। सोचता हूं अगर इस क्रोध हरण शलाका से उसका भी भला हो जाए तो क्या बुरा है। ए, शायद वो आ गए। अरे आ गए रमेश।
3: नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते
3: जी, आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता।
1: लीला नहीं आई?
3: लीला वो आ रही है पीछे।
1: लगता है आते आते रास्ते में फिर झगड़ा हुआ।
3: हाँ मास्टर जी, झगड़ा करते समय लीला घर बार कुछ नहीं देखती। नरक भोग रहा हूँ नरक।
1: जानता हूँ रमेश, सब कुछ जानता हूँ। आज मैं उसे ऐसा उपदेश दूंगा, उसके सामने आदर्श गृहिणी का ऐसा नमूना पेश करूंगा कि लीला एकदम प्रेममयी, स्नेहमयी, मधुर स्वभावमयी गृहिणी बन जाए।
3: सच्ची बात है।
1: और तुम्हारा घर बन जाएगा स्वर्ग का नमूना। और हाँ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब तुम्हें भी आज मुझसे सीखना होगा।
3: जरूर सीखूंगा मास्टर जी, माने लेता हूँ क्या।

0: मैं 25 वर्ष बाद फिर आपकी क्लास में पढ़ने आया हूँ। लीला आ रही है।
1: आइए आइए लीला जी, मैं दरवाजे पर आपके ही स्वागत के लिए खड़ा हूँ।
2: नमस्ते मास्टर जी।
1: नमस्ते बेटा।
2: मुझे पीछे छोड़कर पहले यहाँ पहुँच गए। क्या लड्डू मिल गए यहाँ आकर तुम्हें? तुम्हें तो मेरे साथ आते हुए भी शर्म मालूम
1: है। शांत शांत शांत शांत लीला जी, शांत। रमेश
0: जी, जी मास्टर जी,
1: ये बात बुरी बात है। तुम्हें लीला जी के साथ आना चाहिए था
0: जी।
1: ये ठीक है कि जीवन में मर्द जरा तेज चलते हैं।
2: अरे हाँ, तेज चलते हैं हमारे, ये तो जन्म जन्म की फिसड्डी है। इनके साथ के बाबू अफसर बन गए और ये अभी तक।
0: अच्छा बाबा, मैं फिसड्डी ही सही। मास्टर जी मेरे बचपन के गुरु हैं, इनके सामने तो मेरी पसना उतारो। घर में भी झगड़ा, बाहर भी झगड़ा।
2: अच्छा, तो तुम अपने इन मास्टर जी के सामने ये साबित करना चाहते हो कि मैं झगड़ालू हूँ, लड़ाका हूँ, करता
1: हूँ? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं लीला जी, नहीं। आपने तो बड़ा ही मधुर और स्नेहपूर्ण स्वभाव पाया है। उस दिन मुन्नू की माँ भी आपके घर गई थी, वो तो आपकी सराहना करते ही नहीं।
0: मास्टर जी, क्या बात है? लगता है घर में जैसे ना मास्टरानी जी है ना मुन्नू है।
1: अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। मुन्नू की माँ, 15 मिनट हो गए, मुझे क्रोध हरण शलाका निकाल कर बाहर चली आओ।
0: क्रोध हरण शलाका?
1: अरे भाई देखो, रमेश आया है।
3: मेरा भाई रमेश आया है। ये तो कोई
1: भाई का नाम सुनते ही मुन्नू की माँ कैसी लपकी आई। रमेश
0: जी,
1: तुम्हें शायद पता नहीं, इनके भाई यानी के मेरे साले का नाम भी रमेश है।
0: साले का?
1: वो बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता है
0: जी।
1: तुम जितने नेक हो वो उतना ही दुष्ट है।
3: जवान संभाल कर बोला जी
1: है?
3: मेरे देवता सरी के भाई का दुष्ट कहते हो?
1: शाह शाह शा? लगता है क्रोध हरण शलाका पूरे 15 मिनट मुंह में नहीं रही।
3: मुझसे भूल हुई जी। मुझे छोटी सी बात पर यूं क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे भाई को दुष्ट कहा तो मुझे मजाक मानकर हंस देना चाहिए था।
0: कमाल।
3: आओ लीला, आओ रसोई में चलें, वहीं बैठ कर बातचीत करेंगे। मुन्नू के बापू।
1: हाँ, मुन्नू की माँ।
3: तुम रमेश को संभालो, मैं अभी चाय बना कर लाई। आओ लीला।
2: चलो दीदी।
0: मास्टर जी, आपने ये क्या जादू किया? मुन्नू की माँ का स्वभाव तो इन्हीं एकदम बदल गया।
1: हाँ।
0: पहले तो ये भी लीला की तरह झगड़ालू, क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव की थी।
1: रमेश
0: जी,
1: अरे भाई ये सब इस क्रोध हरण शलाका की करामात है।
0: हाँ? क्रोध हरण शलाका का नाम की ये लोहे की सलाई आपने भी अपनी जेब में डाल रखी है।
4: मास्टर जी, मास्टर जी।
1: हाँ।
4: आखिर ये है क्या चीज?
1: अरे भाई तुम इसे चमत्कारी थर्मामीटर कह सकते हो।
0: थर्मामीटर?
1: हाँ। देखो आम थर्मामीटर तो केवल टेम्परेचर बताता है
0: जी,
1: परंतु ये क्रोध हरण शलाका दिमाग के टेम्परेचर को, मतलब ये कि दिमाग की गर्मी को 15 मिनट में ठंडा कर देती
0: है। यानी जितनी गर्मी है दिमाग को ठंडा कर देती है।
1: ये दिमागी गर्मी ही क्रोध कहलाती है।
0: वाह वाह,
1: घरों में पति पत्नी के झगड़े इसी दिमागी गर्मी के कारण ही होते हैं। देखो 10-12 दिन हुए
0: जी,
1: उत्तराखंड की गुफाओं के वासी एक सिद्ध महात्मा दिल्ली आए
0: जी।
1: उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई, उन्हें मैं घर ले आया। उन दिनों मुन्नू की माँ मुझसे लड़कर महके गई हुई थी। मैंने महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाया, उन्होंने मुझे 4 क्रोध हरण शलाकाएं दी और कहा कि बच्चा इनका उपयोग तुम भी करो, तुम्हारी पत्नी भी करे, घर में सदा सुख और शांति रहेगी। जिसे भी क्रोध का दौरा पड़े वही शलाका को 15 मिनट के लिए थर्मामीटर की तरह मुंह में रख ले, क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। मुन्नू की माँ जब मैके से लौटी तो मैंने उसे 1 क्रोध हरण शलाका दे दी। एक अपने पास रख ली।
5: जी
1: जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं ये शलाका 15 मिनट के लिए मुंह में रख लेता हूँ।
5: आप भी?
1: हाँ, गुस्सा का पूर हो जाता है।
5: वाह वाह वाह, ये तो कमाल की चीज है मास्टर।

0: जी
1: है? बाकी की दो शलाखाएं आपके पास है। नमस्ते जी।
0: अपने किसी परम प्रिय मित्र को देने के लिए वे दोनों ही मैंने अंदर की अलमारी में संभाल कर रखी हुई है।
1: तो मास्टर जी एक क्रोध हरण शलाका मुझे लीला के लिए दे दीजिए ना।
2: मास्टर जी, दीदी ने मुझे क्रोध हरण शलाका का हाल सब सुना दिया है।
0: अच्छा
2: मास्टर जी, एक शलाका मुझे भी जरूर दे दीजिए।
0: जरूर।
2: मुझे अभी जब गुस्सा आएगा तो मैं 15 मिनट के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया करूंगी।
0: लीला जी, इस शलाका का उपयोग मेरी तरह रमेश को भी करना चाहिए। घरेलू जीवन के सुख और चैन के लिए पति और पत्नी दोनों के ही दिमाग ठंडे रहने चाहिए। मैं अभी लाया तुम दोनों के लिए क्रोध हरण शलाकाएं। अरे भाई पुन्नू की माँ, ये बाकी की वो दोनों क्रोध हरण शलाकाएं अलमारी से गायब थी।
2: जी, आप एक बार फिर ढूंढ कर देखिए, घर में ही रखी थी तो घर में ही रहेंगी।
0: अच्छा, अब पिछले स्टोर की अलमारी में और देख लेता हूँ।
1: देखिए मास्टर जी, लीला इधर आओ। अगर ये शलाकाएं ना मिली तो बहुत बुरा होगा।
2: बहुत बुरा होगा।
3: हे मास्टर सिल्वी,
4: प्रिंसिपल साहिबा, आप मेरा मुन्नू क्यों रो रहा है?
5: माता जी, प्रिंसिपल साहिबा ने आज मुझे मारा, मुर्गा बनाया और अब कान से पकड़ कर घसीटती हुई लाई है।
4: ये कौन होती है मेरे बेटे को मारने वाली?
1: मास्टर जी, आप मुंह से क्रोध हरण शलाका ना निकालिए, अभी 15 मिनट नहीं हुए। मैं प्रिंसिपल साहिबा से बात करता हूँ।
3: आप मुझसे क्या बात करेंगे? कहाँ है मास्टर सिल्विल? ये शैतान लड़का पढ़ने में ही कमजोर नहीं, चोर भी है। मैंने विलायत से प्लैटिनम की सलाइयाँ मंगवाई थी, मुन्नू ने चुरा कर टुकड़े टुकड़े कर दी। आज 2 टुकड़े इसकी जेब में पाए गए। वो देखो उन सिलाइयों का एक टुकड़ा तो मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी है।
4: क्या? पहले मेरे लड़कों को चोट ठहराया और अब मुझे भी चोट।
1: मीनाक्षी जी, ये तो क्रोध हरण शलाका है।
0: अरे मुन्नू की माँ। अरे भाई रमेश भाई, बहुत झूठा बाकी की दो शलाका।
4: अरे सुना तुमने, तुम्हारी ये मीनाक्षी क्या कह रही है?
0: मीनाक्षी जी आई है। क्षमा कीजिए, पहले मैंने आपको देखा ही नहीं। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मुन्नू की माँ, जल्दी से इनके लिए चाय लाओ।
4: चाय तो बाद में आ जाएगी, पहले ये तो सुन लो कि ये सारे घर को अपनी सलाइयों का चोर ठहरा रही है।
0: सलाइयाँ?
4: हाँ।
0: कैसी सलाइयाँ
3: मास्टर जी?
0: कैसा चोर?
3: मैंने स्वेटर बुनने के लिए प्लैटिनम की चमचमाती सलाइयाँ विशेष रूप से विलायत से मंगाई थी। एक दिन वो सलाइयाँ स्कूल में खो गईं। मैंने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा। आपको तो याद है ना सिल्विल जी?
0: मुझे तो कुछ भी याद नहीं।
3: आज उन सलाइयों के 2 टुकड़े मुन्नू के पास से मिले। एक टुकड़ा अभी अभी मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी थी।
1: मीनाक्षी जी, और एक टुकड़ा अभी आपको मास्टर जी की जेब में मिलेगा।
4: तो रमेश, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुन्नू के बापू ने वो सलाइयाँ चुरा कर उनकी ये क्रोध हरण शलाकाएं बनाई हैं?
1: लगता है मुन्नू के पास वही टुकड़े पाए गए हैं जो सिल्विल जी अलमारी में ढूंढ रहे हैं।
3: मेरी कीमती सिलाइयों की ये दशा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी।
4: मुन्नू के बापू, तुमने चोरी की है।
0: मैंने नहीं।
4: चोरी की है, चोरी करके मुझे धोखा दिया है तुमने। साधु महात्मा की देन बताकर सलाइयों के टुकड़ों से 15 मिनट के लिए मेरा मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया बीवी के साथ ऐसा धोखा? आज मैं चगाती हूँ।
1: आज मैं मास्टर जी की सूझबूझ का लोहा मान गया।
2: वो कैसे?
1: मैं बताता हूँ लीला तुम्हें। एक पति अपनी बीवी की बटझक से बहुत परेशान था। जैसे मैं, बीवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर दिया और कहा कि बीमार बीवी 8 मिनट तक थर्मामीटर मुंह में रखे। बीवी की बटझक से परेशान पति बोला, डॉक्टर साहब कोई ऐसा थर्मामीटर दीजिए तो कम से कम 15 मिनट तक बीवी के मुंह में रखा जाए। मास्टर जी ने खुद ही स्वेटर बुनने की सलाइयों का ऐसा थर्मामीटर बना डाला जो बीवी का मुंह 15 मिनट तक बंद रहे।
4: अच्छा,

0: मेरा मुंह बंद करने के लिए ही क्रोध हरण शलाका का यह प्रपंच रचा गया था।
1: दीदी, मेरे इलाज के लिए मास्टर जी क्रोध हरण शलाका की भेंट हमें भी दे रहे हैं।
2: अब भाई, ये तो मैंने
0: बापू, मेरा जी चाहता है कि यार आज तो मैं तुम्हें मार दूं।
3: लीला लीला, हम बाल बाल बच गए। चोरी का माल जब हमारे पास से भी बरामद होता तो क्या होता।
4: मास्टर जी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। कल से मेरे स्कूल में ना आना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा चोट्टा मास्टर।
5: भगवान, ये क्रोध हरण शलाकाएं तो नौकरी हरण शलाकाएं साबित हुई। लीला की जी,
6: अभी आप सुन रहे थे चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म वॉर से। आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया से। आवाज़ मित्रास की थे, गीत के बोल और संगीत मित्रास के ही थे। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म तू झूठी में मक्कार से, आवाजें सुनिधि चौहान और साथियों की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शाश्वत सिंह का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। सुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात

0: मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी एजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को

0: यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: डिस्को।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जागने,
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से, आवाजें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अन्विता दत्त और कुमार के, और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: करता है।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
1: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

0: देखते।
1: 1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

0: गंगा।
1: अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

सुनकर ये दिल लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में K.L. सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता उबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूमों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

जब निगाह में तुम ही थे, जब दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही थे, जब हमने तुम्हारे सिवा और तुम्हारे पार कुछ सोचा ही नहीं, तो अब भी नहीं सोचेंगे। आज भले निगाहों में धुंध छाई हो और सूझता न हो कुछ, पर हमारी दुनिया तो तुमसे ही रोशन रही है, आगे भी रहेगी रोशन। कैसे मिटाया जा सकता है दिल पर लिखा तुम्हारा सुनहरा नाम।

अच्छा ये गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी आए।

यूं भी होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है, यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता, दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर घड़ी।

साथ के पल बीत जाते हैं जल्दी। कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं। एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे। तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा आसमान।

पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक। मुझको अपने

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग

0: के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden